ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि

बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के।

बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दोष शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तोहदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहा सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक।

तो हम अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओं तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कने तो हाँ सारे इन्हीं बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ इस वक्त तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना दे ना माटी दी महक जी श्रोताओ ता बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुन दे न कार्यक्रम दा अगला गीत तो हाँ सारी इं बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

लिए तो हम अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओं तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कने तो हाँ सारे इन्हें बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

बोला करते हैं ना रेडियो गुंजन धर्मशाला ते गणेश होताओ तो हाँ सारे ही इस वक्त कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक जी श्रोताओ ता बढ़ देना कार्यक्रम जो अगे कने सुन देना कार्यक्रम दा प्यारा दिया अगला गीत तो हाँ सारे ये बनी दिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने बंदी।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ, अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो, बिल भर देंगे पापा।
2: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
2: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
2: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है।
3: सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

रिमझिम बरसता भादों का महीना और कान्हा की मीठी बंसी की वो तान, जेल की उस भयानक काली रात में जन्मे जो बने पूरे ब्रह्मांड की शान।

मथुरा में जन्मे, गोकुल में पले और अधर्म का नाश कर दुनिया का किया कल्याण। कारागार में जन्म लिया यशोदा के घर, पले बढ़े और अपनी लीला से जग का किया उद्धार। आ रहा है उसी माखन चोर का जन्मदिन।

जन्माष्टमी पर्व आइए मिलकर मनाएं हम सब एक साथ। आने वाले जन्माष्टमी पर्व की आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

0: गुण तो सभी में है, थोड़े तेजी से बढ़े, थोड़े देरी से, थोड़े लंबे तो थोड़े पतले, थोड़े नाटे तो थोड़े तगड़े, थोड़े फल के लिए सब्र कराते, थोड़े तुरंत दिलाते। गुण तो सभी में है, पर जब तक पानी, धूप और मिट्टी ना मिले, ये कैसे बढ़े? काफी बच्चों की भी यही शंका है। सही शिक्षा, पोषण और संरक्षण के बिना ये तारे अधूरे रह जाते हैं। आओ मिलकर बटाए हाथ, देने हर बच्चे को एक हौसला, हर रोज हर बार साथ, तो बढ़ाए एक छोटा सा कदम, भरे इनके सपनों में रंग, और दीजिए इन बच्चों को बढ़ने का बढ़ावा।
1: कर्म कभी किसी का उधार नहीं रखता। आज जो आप दूसरों को दे रहे हो, कल वही आपके पास लौट कर आएगा। चाहे प्यार हो, दर्द हो या धोखा, इसलिए हमेशा अच्छा करो, भले सामने वाला कैसा भी हो। क्योंकि वक्त देर से सही पर हिसाब जरूर करता है।
2: नेहा।
3: हाँ जी।
2: मैं अपने दोस्तों के साथ 5 मिनट होके आ रहा हूँ।
3: हाँ, बस आप हर जगह चले जाते हो, पर कभी मेरे साथ बैठ के मेरे दो शब्द नहीं सुनते।
2: अच्छा बाबा बैठो, सुनाओ अपने दो शब्द।
3: नहीं जाना।
4: ये भगवान क्या जुलूम है।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आज के कार्यक्रम में श्रोताओं बस इतना ही। अब अपनी रेडियो दोस्त पिंकी को दीजिए इजाजत और यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ,
2: अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो, बिल भर देंगे पापा।
1: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई एश निकलती है वो हवा पानी

रिमझिम बरसता भादों का महीना और कान्हा की मीठी बंसी की वो तान, जेल की उस भयानक काली रात में जन्मे जो बने पूरे ब्रह्मांड की

मथुरा में जन्मे, गोकुल में पले और अधर्म का नाश कर दुनिया का किया कल्याण। कारागार में जन्म लिया यशोदा के घर, पले बढ़े और अपनी लीला से जग का किया उद्धार। आ रहा है उसी माखन चोर का जन्मदिन,

जन्माष्टमी पर्व आइए मिलकर मनाएं हम सब एक साथ। आने वाले जन्माष्टमी पर्व की आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

0: गुण तो सभी में है, थोड़े तेजी से बढ़े, थोड़े देरी से, थोड़े लंबे तो थोड़े पतले, थोड़ी
1: रात में जन्मे जो बने पूरे ब्रह्मांड
0: से बड़े। काफी बच्चों की भी यही शंका है, सही शिक्षा पोषण और संरक्षण के बिना ये तारे अधूरे रह जाते हैं। देने हर बच्चे को एक हौसला, हर रोज हर बार साथ, भरे इनके सपनों में, थोड़े लंबे तो थोड़े पतले, थोड़े नाटे तो थोड़े तगड़े, थोड़े फल के लिए सब्र करा दे, थोड़े

0: तुरंत दिलाते। गुण तो सभी में है, पर जब तक पानी, धूप और मिट्टी ना मिले ये कैसे बढ़े? काफी बच्चों की भी यही शंका है। सही शिक्षा, पोषण और संरक्षण के बिना ये तारे अधूरे रह जाते हैं। आओ मिलकर बटाए हाथ, देने हर बच्चे को एक हौसला, हर रोज हर बार साथ। तो बढ़ाए एक छोटा सा कदम, भरे इनके सपनों में रंग और दीजिए इन बच्चों को बढ़ने का बढ़ावा।
1: कर्म कभी किसी का उधार नहीं रखता। आज जो आप दूसरों को दे रहे हो कल वही आपके पास लौट कर आएगा। चाहे प्यार हो, दर्द हो या धोखा, इसलिए हमेशा अच्छा करो, भले सामने वाला कैसा भी हो। क्योंकि वक्त देर से सही पर हिसाब जरूर करता है।
2: नेहा।
3: हाँ जी।
2: मैं अपने दोस्तों के साथ 5 मिनट होके आ रहा हूँ।
3: हाँ, बस आप हर जगह चले जाते हो पर कभी मेरे साथ बैठ के मेरे दो शब्द नहीं सुनते।
2: अच्छा बाबा बैठो, सुनाओ अपने दो शब्द।
3: नहीं जाना।
4: ये भगवान क्या जुलूम है,

सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जी श्रोताओं, हो गई है गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम शुरू भी हो गया है। तो आपके पसंदीदा चैनल 91.2 एफएम रेडियो गुंजन धर्मशाला से, और जैसा कि आप सब को विदित है, जानते हैं आप कि 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक हम रहते हैं आप सभी के साथ लाइव। तो आज के इस लाइव शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। और जितने श्रोता हमें फेसबुक पेज लाइव से देख रहे हैं उन सब का भी बहुत बहुत स्वागत। और आप सभी जानते ही हैं कि आज है रविवार। जी हाँ, वीकेंड पर भी हम आपके साथ थे और आज के दिन भी मुझे आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। और रविवार के दिन हमने ना बहुत सारे काम शेड्यूल किए होते हैं कि हमारा ये काम पूरे हफ्ते का पेंडिंग रह गया तो हम इस दिन करेंगे, या फिर कहीं घूमने फिरने का हमने प्लान बनाया होता है। जो भी हो, बस कोशिश कीजिएगा जो भी काम आपके रह गए थे वो आज आप पूरे कर लीजिएगा। हालांकि मौसम का हालचाल तो बाहर अभी भी कहीं आने जाने वाला लग नहीं रहा, दिख नहीं रहा, क्योंकि मौसम कैसा है वो हम आपसे बाद में बताएंगे। फिलहाल आज का विचार ले लेते हैं। तो आज का विचार कुछ ऐसा है, जी हाँ, ये एक फिर से एक छोटी सी कहानी है और कहानी के साथ ही आगे आते आते आपको विचार का भी पता लग जाएगा। पुराने समय में होते थे गुरु और शिष्य, अभी भी होते हैं, लेकिन वो तब की बात है जब बच्चों को छोड़ दिया जाता था गुरुकुल में, तो सीखने सिखाने के लिए, पढ़ने के लिए, और गुरु उन्हें सब कुछ सिखाते थे। तो एक गुरु शिष्य रास्ते में जा रहे थे, एक छोटा सा पौधा मिला रास्ते में और गुरु ने कहा शिष्य को कि इसको उखाड़ करके फेंक दो, और शिष्य ने तुरंत उसे उखाड़ करके फेंक दिया। थोड़ी दूर और बढ़े, वहाँ पर एक थोड़ा सा और छोटा तो नहीं, उससे थोड़ा बड़ा पौधा मिला, और फिर से गुरु ने कहा कि इसे भी आप उखाड़ करके फेंक दीजिए। इस बार शिष्य ने थोड़ी सी ज़्यादा ताकत लगाई और पूरी जोर शोर से उसे उखाड़ करके फेंक ही दिया। आगे क्या हुआ होगा श्रोताओं, इमेजिन कर सकते हैं आप। आगे चलने पर कुछ दूर पर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ मिला और फिर गुरु ने कहा शिष्य को कि इसे भी आप उखाड़ करके फेंको। हालांकि हमारे यहाँ पर तो ये पेड़ पौधे उखाड़ने की परंपरा नहीं है बल्कि लगाने की है, लेकिन शायद गुरु कुछ समझाना चाह रहे थे उस शिष्य को। और वो क्या समझाना चाह रहे थे, बस अभी थोड़ी ही देर में आप भी समझ जाएंगे। तो शिष्य हैरान होकर के बोला कि गुरुदेव आप कैसी बातें कर रहे हो, इसकी जड़ें तो बहुत गहरी हैं और इतना बड़ा पेड़ है, आखिरकार मैं कैसे इसे उखाड़ पाऊंगा। तो गुरु मुस्कुराए और बोले यही तो बच्चे मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि बुरी आदतें, बुरे काम और बुरे लोग अगर हमारे आसपास में हैं, वैसे लोग तो बुरे नहीं होते हैं, उनके कर्म बुरे होते हैं, तो उन कर्मों से डरो, और अगर आपके आसपास या आपके अंदर ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो उन्हें समय रहते उखाड़ करके फेंक दो, यानी अपने ज़िंदगी से निकाल दो जितना जल्दी हो सके, क्योंकि जब वो अपनी जड़ें पकड़ लेंगे और आदत बन जाएंगे तब उन्हें छोड़ना मुश्किल हो सकता है।
तो समय रहते ऐसी चीज़ों से पीछा छुड़ा लेना चाहिए। अगर एक बार उनकी जड़ें गहरी हो गई तो फिर वाकई में उन्हें उखाड़ करके फेंकना मुश्किल हो जाता है। और हमारे श्रोता जुड़ गए हैं फेसबुक पेज लाइव से भी, आपका स्वागत है। कोई लाइक शेयर कमेंट आप ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, ये छोटी सी कहानी के ज़रिए हमने आज का विचार भी ले लिया है कार्यक्रम में, और बीच बीच में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम और विचार भी लेते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि क्या क्या ज़िंदगी में और ज़रूरी होता है। खैर, गीत संगीत और जानकारियों से भरे इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और अब ले लेते हैं हम एक खूबसूरत सा गीत।

जी श्रोताओं, आदमी तो मुसाफिर ही है ना। हम देखते हैं इतना कुछ होता है हमारे सामने, लेकिन हम क्या कर पाते हैं? बस देखते ही रह जाते हैं। हम अपनी परिस्थितियों से भी तो नहीं लड़ पाते, पर हाँ उन्हें बदल जरूर सकते हैं। 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और आज रविवार को एंजॉय कर रहे हैं। आज हो गई है 30 अगस्त, बस एक दिन बचा है और ये जो महीना है ये भी ख़त्म होने को है। तो समय से कोई नहीं जीत सकता, समय के साथ साथ चलने में ही भलाई है। ना हम समय से आगे निकल पाएंगे कभी और ना ही हम पीछे जा कर के समय को बदल सकते हैं। तो बस जो भी करना है हमें आज ही हम कर सकते हैं। तो चलिए इस समय मौसम का क्या हालचाल है वो भी जान लेते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस है इस समय धर्मशाला और उसके आसपास के क्षेत्रों में तापमान। और अगर हवा में नमी की बात करूं तो 85%, और विजिबिलिटी यानी परसेप्शन है 20%। एयर क्वालिटी अच्छी है। और पूरे दिन भर के मौसम की का हाल अगर आप जानना चाहें तो आज गरज के साथ आंधी तूफान और भारी बारिश की पूरी संभावना है। लेकिन ये जो अभी हम बता रहे हैं ये पूरे हिमाचल के लिए होता है, तो आप ये मत सोचिएगा कि केवल यही धर्मशाला के लिए है। पूरे हिमाचल में ये कहीं भी हो सकता है। अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस जाने की उम्मीद और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस से। इक्कीस के आसपास रहने की का अनुमान है। हवा में नमी बनी रहेगी। दृश्यता यानी विजिबिलिटी सामान्य या आंशिक रूप से धुंधली हो सकती है। और ये जो विजिबिलिटी होती है ना, इस पर डिपेंड करता है हमारा जो ये हमारे हवाई जहाज आते हैं, जो फ्लाइट्स आती हैं वो। तो जब विजिबिलिटी अच्छी नहीं होती है तो हमारी जो फ्लाइट्स होती हैं ना वो भी कैंसिल करनी पड़ जाती हैं कई बार।

तो इस समय भी बाहर का जो मौसम है वो बादलों से भरा हुआ है दोस्तों। और अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और फिर से सुनते हैं एक और गीत।

0: बस समझिए कि हम भी ये जादू की पिटारी लेकर के ही आए हैं आप सभी लोगों के लिए। बस धीरे धीरे ये पिटारी खुलेगी और राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से दिवस हैं वो भी आप जानेंगे।
1: ढोल बंदर मेरा करता है जी देखो रॉक एंड रोल।
0: बस कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचारों की ओर भी चलेंगे। सोने वाले हैं 9:20 और उसके बाद हम आपसे मिलेंगे 9:30 पर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में साझा करेंगे अपने विचार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता आज लोकभवन में प्रदेश उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों व एक अतिरिक्त न्यायाधीश को दिलाएंगे शपथ। जनजातीय जिला किन्नौर में पशुपालन को बढ़ावा देने में किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा ग्रामीणों के लिए साबित हो रही मददगार। और मौसम विभाग के अनुसार कल से मॉनसून के फिर से सक्रिय होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 137वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। केंद्र सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता आज लोकभवन में प्रदेश उच्च न्यायालय में दो न्यायाधीशों तथा एक अतिरिक्त न्यायाधीश को शपथ दिलाएंगे। चिराग भानु सिंह व भूपेश शर्मा को न्यायाधीश तथा योगेश जसवाल को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह 5:30 बजे आयोजित होगा। जनजातीय जिला किन्नौर में पशुपालन को बढ़ावा देने और किसानों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC सुविधा किन्नौर के ग्रामीणों के लिए मददगार साबित हो रही है। इसके तहत गाय सहित दुधारू पशुओं के पालन पोषण के लिए पशुपालकों को कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल रही है। पशुपालक KCC के लिए अपने नजदीकी बैंक शाखा या पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं, जहां उन्हें वर्तमान नियमों के अनुसार ऋण सीमा, ब्याज दर, पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी जाएगी। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता।
1: गाय पालन के लिए एक गाय पर 1,12,859 रुपए तक KCC ऋण की सुविधा निर्धारित हो सकती है। इस हिसाब से पात्र पशुपालक जरूरत और बैंक के नियमों के अनुसार लगभग 2,00,000 रुपए तक की KCC सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि वास्तविक ऋण सीमा, पशुओं की संख्या, निर्धारित दर, किसान की जरूरत और बैंक के आंकलन के आधार पर तय होगी। KCC से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल गाय के लिए चारा, दाना, पशु चिकित्सा, दवाइयां और रखरखाव से जुड़े जरूरी खर्चों पर पूरा करने में किया जा सकता है। यदि किसान निर्धारित नियमों के अनुसार समय पर ऋण का भुगतान करता है तो उसे अतिरिक्त ब्याज राहत यानी समय पर भुगतान प्रोत्साहन का लाभ मिल सकता है। इससे किसान पर ऋण की ब्याज भार कम हो सकता है। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
0: प्रदेश के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना का दूसरा चरण 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा और अन्य सामाजिक पहलुओं से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। सिरमौर जिले में भी नौरादार क्षेत्र के बर्फबारी प्रभावित 10 गांवों में इस दौरान जनगणना की जाएगी। उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने सभी लोगों से जनगणना कार्य में सहयोग की अपील की है।
2: जिला सिरमौर में जो हमारा स्नोबाउंड एरिया है वो तहसील नौराधार में पड़ता है और इसमें हमारे 10 गांव हैं। यहाँ पे जो हमारा पॉपुलेशन इनॉग्रेशन है, जो फेज 2 है सेंसस का, ये 1 सितंबर से 20 सितंबर तक चलेगा। अब सेकंड फेज में इन 10 गांव में हमारे जो इनॉग्रेटर्स हैं वो लोग जाएंगे, घर घर विजिट करेंगे और जो बाकी का जो हमारा सेंसस का जो डेटा हमें लेना है पॉपुलेशन इनॉग्रेशन का, उसको कलेक्ट किया जाएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन है इसी के बदौलत आगे जो हमारी पॉलिसीज बननी है।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
3: बच्चों, हमेशा रखो याद, चॉकलेट, मिठाई या आइसक्रीम खाने के बाद आगे पीछे ऊपर नीचे दिन में 2 बार, सुबह और शाम डेली 2 मिनट 2 बार। दांतों की सफाई बहुत जरूरी है। खूबसूरत चमचमाते दांत और प्यारी सी मुस्कान सबका दिल जीत लेती है। डेली 2 बार ब्रश करने से आपके दांत स्वस्थ रहते हैं और मुंह में बीमारी फैलने वाले जर्म्स और बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। कुल्लू जिला में बच्चों के संरक्षण व कल्याण के लिए गठित स्पॉन्सरशिप व फोस्टर केयर अनुमोदन समिति की बैठक एडीएम सुरजीत सिंह राठौर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में समिति के समक्ष विभिन्न विकास खंडों से प्राप्त 61 नए मामलों को मंजूरी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त बैठक में पहले से चल रहे 1097 मामलों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा भी की गई, ताकि पात्र बच्चों को मिल रही वित्तीय सहायता निरंतर जारी रह सके। बैठक में बताया गया कि स्पॉन्सरशिप योजना के तहत ऐसे बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जो किसी संकट की स्थिति के कारण अपने जैविक माता पिता, एकल माता पिता अथवा विस्तारित परिवार जैसे नाना नानी या दादा दादी के साथ रह रहे हैं। पात्र बच्चों को 4,000 रुपये प्रतिमाह की सहायता 18 वर्ष की आयु तक प्रदान की जाती है। स्पीति के मुद गांव के फरा पुल के निर्माण में हो रही देरी को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा स्पीति मंडल ने प्रदेश सरकार और प्रशासन के प्रति रोष जताया है। विस्तृत ब्यौरा हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता से।
4: भाजयुमो मंडल अध्यक्ष दोरजे नामग्याल का कहना है कि वर्षों पुरानी मांग पर समय रहते कार्रवाई न होने से ग्रामीणों को जोखिम उठाना पड़ रहा है। हाल ही में सामने आए एक वीडियो का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण उभनती नदी को ट्रैक्टर के जरिए पार करते नजर आए। नदी का बहाव तेज होने के कारण ट्रैक्टर भी बहते बहते बचा। ग्रामीणों को मवेशियों के लिए घास और जरूरी सामान के लिए इस जोखिम भरे रास्ते का सहारा लेना पड़ रहा है। दोरजे नामग्याल ने प्रदेश सरकार से मुदफरा पुल निर्माण को तत्काल स्वीकृति देने और कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की मांग की है। आकाशवाणी के
0: राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार कल से मॉनसून फिर सक्रिय हो सकता है। सोलन जिला के परवाणु में कल शाम भारी बारिश हुई, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। बारिश से परवाणु के सेक्टर 2 टकसाल रेलवे फाटक के पास तथा आसपास के उद्योगों में पानी घुस गया है। मूसलाधार बारिश के कारण कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर शिमला से कालका जा रही 4 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। प्रदेश में भूस्खलन से अभी तक 54 सड़कें बाधित हैं, जबकि वर्षा से बाधित हुई सभी पेयजल योजनाओं को ठीक कर दिया गया है। इधर कड़छम वांगतू जल विद्युत परियोजना प्रबंधन ने आम लोगों, स्थानीय लोगों, पर्यटकों और श्रमिकों से अपील की है कि वे सतलुज नदी के किनारों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें और इस दौरान नदी के पास न जाएं। परियोजना प्रबंधन के अनुसार कड़छम बांध में पानी का प्रवाह लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते बांध से कभी भी पानी छोड़ा जा सकता है। प्रबंधन ने बताया कि पानी छोड़े जाने के दौरान लोगों को सतर्क करने के लिए हूटर और सायरन बजाए जाएंगे। परियोजना प्रबंधन ने सभी लोगों से अपील की है कि चेतावनी मिलने पर नदी और जलधाराओं से तुरंत सुरक्षित दूरी बनाए रखें और प्रशासन तथा परियोजना प्रबंधन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से सुर्खी दी है, सोलन से होगी मुफ्त 300 यूनिट बिजली देने की शुरुआत। दिव्य हिमाचल का शीर्षक है, मछुआरों के खाते में डाले 35 लाख मुख्यमंत्री मत्स्य सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय सहायता जारी। हिमाचल दस्तक के शब्द हैं, बद्दी में बिना पंजीकरण आवंटित भूमि को रद्द करने पर विचार करेगी सरकार। जबकि दैनिक भास्कर का कहना है, देहरा से शुरू होगी प्रदेश की पहली ओजोन पेयजल परियोजना। दैनिक जागरण का शीर्षक है, हिमालय क्षेत्र में परियोजनाओं की सुरक्षा पर पीएमओ सतर्क। पंजाब केसरी की सुर्खी है, 231 करोड़ की संदिग्ध बिलिंग का खुलासा, 41 करोड़ 61 लाख की आईजीएसटी आईटीसी जांच के घेरे में। दैनिक भास्कर के मुताबिक मंडी के चेलंग में भूस्खलन प्रशासन ने गांव के 4 परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट होने को कहा। अमर उजाला की एक अन्य खबर है, स्वाइन फ्लू से बुजुर्ग की मौत, 2 और पॉजिटिव। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में साझा करेंगे अपने विचार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता आज लोक भवन में प्रदेश उच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों व 1 अतिरिक्त न्यायाधीश को दिलाएंगे शपथ। जनजातीय जिला किन्नौर में पशुपालन को बढ़ावा देने, किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा ग्रामीणों के लिए साबित हो रही मददगार। और मौसम विभाग के अनुसार कल से मॉनसून के फिर से सक्रिय होने की संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 10:45 पर। नमस्कार।

श्रोताओं, प्रादेशिक समाचारों के बाद अब स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 9:31 हो चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं फिर से गीतों का सुरीला सफर लेकर और जानकारियों से भरा पिटारा लेकर। सभी का स्वागत एक बार फिर से, परंतु अब कुछ भी न कहते न सुनते हुए हम चलेंगे कार्यक्रम में आगे। आपको सुनवाते हैं एक खूबसूरत सा पंजाबी गीत और उसके बाद फिर से आते हैं कार्यक्रम में वापस करने आपसे बातचीत।

जी, अमरिंदर गिल की आवाज़ में अभी आपने सुन लिया अंग्रेज़ फिल्म का ये गीत। और अब 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के इस कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं आज की तारीख का महत्वपूर्ण इतिहास।

तो श्रोताओं, ज़्यादातर बात हम करते हैं अपने भारत की, और भारत के इतिहास में आज जिनकी जन्म जयंतियाँ हैं उनकी विषय में सुन लीजिए। तीस अगस्त को जन्म हुआ था 1903 में भगवती चरण वर्मा का, एक प्रख्यात हिंदी लेखक थे। उन्होंने मुख्य रूप से लेखन और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम किया था। भगवती वर्मा की रेडियो कविताएं महाकाल, कर्ण और द्रौपदी, जो कि 1956 में त्रिपा ठागा नामक संकलन के रूप में प्रकाशित हुई थी, उनकी विशेष रचनाएं हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। रविशंकर प्रसाद का जन्म भी 30 अगस्त 1954 को पटना बिहार में हुआ। एक वकील और राजनीतिज्ञ रहे। इसके अलावा वे 17वीं लोकसभा में भारत सरकार में इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी और विधि मंत्री रह चुके हैं।

जैस्मिन लंबोरिया के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो वो भारत की पहली भारत की महिला मुक्केबाज हैं। उन्होंने इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में देश के लिए कांस्य पदक जीता था। उन्होंने महिलाओं के 60 किलोग्राम यानी हल्के वजन वर्ग में ये पदक हासिल किया था। उनका जन्म 30 अगस्त 2001 को हरियाणा के भिवानी में हुआ। कुछ पुण्यतिथियों पर भी नजर डाल लेते हैं। गंगा प्रसाद श्रीवास्तव की आज पुण्यतिथि है। वो एक हिंदी लेखक थे, एक कुशल कथाकार, कहानीकार और बेहतरीन अभिनेता भी रहे। कई नाटकों में दमदार अभिनय उन्होंने किया और उस समय श्रीवास्तव जी एक अंक के नाटकों के एक सशक्त अभिनेता थे। विपिन चंद्र की बात करें तो 30 अगस्त 2014 को वो इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए थे। एक प्रख्यात इतिहासकार और राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष रहे प्रोफेसर विपिन चंद्र भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आधुनिक इतिहास लेखन परंपरा के मार्क्सवादी विचारधारा के इतिहासकार थे।

न्यूजीलैंड के भौतिकी विज्ञानी और नोबेल पुरस्कार विजेता अर्नेस्ट रदरफोर्ड का जन्म भी आज ही की तारीख को हुआ था 1871 में।

और 30 अगस्त 1928 में भारत में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की स्थापना भी हुई थी। और 30 अगस्त 1947 में भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आज की तारीख के इतिहास से संबंध रखती हैं। और अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं।

0: दोस्तों कितना सुंदर लिखा है किसी ने, सबकी अपनी कहानी है। वो ऐसा है, वो वैसा है, कौन जाने कौन कैसा है। इतना ना किसी की जिंदगी में झांका करो, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद को उस जगह पर रख कर आंका करो। किनारों पर बैठ के यूं ना अंदाजे लगाया करो, जिस बात का पूरा पता नहीं उसको किसी से ना बताया करो। क्योंकि सबकी अपनी अपनी जिंदगी और अपनी अपनी कहानी है, किसी के होठों पर मुस्कान तो किसी की आंखों में पानी है।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल को प्रेस करें।

तो दोस्तों यही तो हम भी कह रहे हैं कि ये बातें बेकार की बातें रहने दो। बेकार की आदत नहीं है मुझे, इतनी प्यार की आदत नहीं है मुझे, मैं अपने हिस्से की रोशनी भी बांट देती हूँ या देता हूँ, उधार की आदत नहीं है मुझे, मैं अपने जख्म छुपाकर ही मुस्कुराता हूँ, खुले बाजार की आदत नहीं है मुझे, जो दिल में है वही चेहरे पे रखता हूँ, अलग किरदार की आदत नहीं है मुझे। और अगर सभी को ऐसी आदत हो जाए तो मुझे लगता है कि दुनिया में थोड़ा सा बदलाव तो हो ही जाएगा। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप सभी हैं और मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। और श्रोताओं, जितने भी हमारे श्रोता आज के दिन को अपने किसी खास वजह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। श्रोताओं, आप ना बिल्कुल नाराज मत हुआ करें, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ आपको मुबारकबाद देना, जैसे कि कल नहीं दी तो कल वाले भी आज ही ले लीजिए। हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं अपने श्रोताओं को नाराज करना, इसीलिए तो हम सारी जानकारियाँ और प्यारे प्यारे से गीत आप तक पहुँचाते हैं, कोशिश करते हैं कि ऐसे ऐसे गीत हम लेकर आएँ आपके लिए चुन चुन कर जो कि शायद आपने कभी सुने ना हो, या अगर सुने हो तो वक्त की गर्त में कहीं खो गए हो, उन पर धूल मिट्टी की चादर पड़ गई हो।

0: एक।
1: और क्या कभी आपने सोचा कि आप भी कोई लघु उद्योग शुरू करें, या फिर आपने किसी को देखा है, किसी को जानते हैं जो लघु उद्योग करता है, तो उसके दिन अगर बदले हैं तो आप हमें बता सकते हैं। अब उस लघु उद्योग में कुछ भी हो सकता है श्रोताओं, एक छोटी सी सिलाई मशीन से भी आप उसे शुरू कर सकते हैं, यानी कि घर में जो हमारी लेडीज सिलाई कढ़ाई करती है ना, वो भी लघु उद्योग ही होता है। लेकिन हाँ, उद्योग में थोड़े से लोग ज़्यादा जुड़े होते हैं, बजाय इसके कि आप अकेले ही स्तर पर वो काम करें, तो कुछ लोगों को अगर आपने साथ में जोड़ा है और उनकी आजीविका भी उससे चल रही है, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। सही मायने में वही लघु उद्योग होता है।

0: और जैसा कि मैंने कहा कि लघु उद्योगों में बाकी सबकी भागीदारी भी होती है, तो भाई अगर हाथ नहीं बढ़ेगा तो फिर वो लघु उद्योग कैसा।
1: फिल्मी गाने के

नया दौर फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में साथी हाथ बढ़ाना। और साथी हाथ बढ़ाना से मुझे एक बात भी याद आई। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और कल ऐसे ही हाथ बढ़ाते बढ़ाते, साथ चलते चलते, एक हम ये तो नहीं कहेंगे कि नामुमकिन सा काम था, लेकिन वो काम जो शायद हो सकता है 10 दिन भी नहीं होता, वो हमने कल के कल ही करवा दिया। बात क्या थी, अगर हम मैं आपको बात बताने आऊँ तो बात कुछ ऐसी थी कि कल हम लोग शाम को गए थे एक टीम के रूप में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर, यानी कि MC जो समृद्धि भवन है ना, वहाँ। अब हम क्योंकि पहुँचे थे शाम को 3 बजे के करीब, और वहाँ पर हमने देखा 2 लड़कियाँ बहुत समय से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लिफ्ट में वो आ जा रही थी और किसी को ढूंढ रही थी। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था, ना वो किसी को बोल पा रही थी। और बाद में जब हमें पूछने पर पता चला कि वो 4 दिनों से वहाँ चक्कर लगा रही हैं और उनको सिर्फ एक बर्थ सर्टिफिकेट अपना लेना था, बनवाना था, लेकिन ये जो रक्षाबंधन की छुट्टी गई ना, उससे पहले से भी वो 4 दिनों से वहाँ आ रही थी, लेकिन उनका काम नहीं हो रहा था। कभी काउंटर पे कोई मिलता नहीं था, कभी कोई और वजह होती थी, मतलब रोज़ मैक्लोडगंज से आना और यहाँ पर पूरा दिन भर बैठना, तो इस तरह से उनका चल रहा था। और हम भी कल कमिश्नर सर से मिलने गए थे, लेकिन हाँ वो भी कहीं बिज़ी थे, बिज़ी होने की वजह से वो टाइम शायद नहीं निकाल पाए, नहीं आए वो दोबारा। वो लंच टाइम तक तो वहीं थे, लेकिन उसके बाद गए, और फिर वो 5 बजे 6 बजे तक तो हम वहीं थे, वो नहीं आए। लेकिन मेयर सर हमको मिल गए। खैर, हमने अपनी बात जो थी वो मेयर सर के सामने रख दी, परंतु उसके बीच में ये हुआ कि जब वो लड़कियाँ अपना देख रही थी कि हमें बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो जब उन्होंने हमें देखा तो उन्होंने हमसे बात की, और फिर ये पता चला कि सारा जो स्टाफ है ना, वो 4:30 बजे के करीब, वैसे तो 3 बजे से ही पार्टी वो चली हुई थी, तो वो जो पार्टी थी, जो बर्थडे पार्टी थी, एक बर्थडे पार्टी थी, वहाँ पे सारा स्टाफ जो है वो अपना एंजॉय कर रहा था। कोई बात नहीं, सरकारी दफ्तरों में होता है कई बार, लेकिन काउंटर पे किसी एक व्यक्ति को तो छोड़ा जाना चाहिए था, जो रिस्पांसिबल होता, जो किसी को बुलाता कि हाँ यहाँ पर पब्लिक डीलिंग के लिए लोग आए हुए हैं और उनको उनका जो काम है वो कर दिया जाए। तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। फिर हमने ली अपनी कैमरा की मदद, और फिर कैमरा से जो चीज़ें हुई वो निकल करके एक पॉजिटिव परिणाम के रूप में तो सामने आ गई, परंतु देखिए ज़रूरी नहीं होता है कि हर जगह पर ये चीज़ें की जाएं। तो हम चाहते हैं कि हमारी अगर स्मार्ट सिटी है तो स्मार्ट तरीके से लोग काम भी करें उसमें, सभी अपनी अपनी जिम्मेवारी समझ करके काम करेंगे, ऐसे ही हाथ से हाथ बढ़ाते चलेंगे तो सबका काम भी आसान होगा। और जो उस चेयर पे बैठा होता है ना, जैसे मान लीजिए मैं इस चेयर पे बैठी हूँ, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमेशा मुझे इसी ऑफिस से काम रहेगा, आखिरकार मुझे भी कहीं कभी किसी दूसरे दफ्तर में जाना पड़ सकता है, और वहाँ पर अगर मेरे साथ इस तरह का बिहेव हो तब फिर क्या होगा। तब हम सोचेंगे कि अरे हमने उस वक्त उस व्यक्ति के साथ भी तो ऐसा ही किया था, 4 दिनों से उसको लटका के रखा था, लिंगर ऑन कर दिया था उसके काम को, जबकि हम आराम से 1 या 2 दिन में उसका काम कर सकते थे। तो ये छोटी सी एक बात थी जो मेरे जहन में आई और मुझे लगा कि आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। और हाँ, एक बात और भी ज़रूरी है कि आप लोगों के साथ भी जब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तो आप अपना मुंह बंद करके चुपचाप वो सब चीज़ें सहन करते चले जाते हैं। भाई बोलना ज़रूरी है, आप बोलेंगे नहीं तो आपको हक नहीं मिलेगा। बच्चा भी जब छोटा होता है ना, तो जब तक रोता नहीं है ना, माँ दूध नहीं पिलाती है। अब ऐसा नहीं है कि वो माँ है और निष्ठुर हो गई कि नहीं पिलाएगी, परंतु हाँ ठीक है, अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं सभी, और ध्यान माँ का तभी जाता है जब वो रो रहा होता है, तो शायद उसे भूख लगी होगी या कोई और वजह होगी, या उसको पेट में दर्द है या कुछ और भी हो सकता है। तो मतलब कहने का भाव ये है कि बोलना ज़रूरी है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के बारे में।
कौन कौन से लघु उद्योग जो हैं वो आप लोगों ने अपने घरों में शुरू किए हुए हैं उसके बारे में जानकारी हमें ज़रूर दीजिएगा। चाहे आप मैसेज के रूप में ही दे दें तो हम आपका मैसेज भी पढ़ देंगे और उससे आपको फ़ायदा क्या हुआ, आपके दिन सुधरे, थोड़े से कुछ चेंजेस आए या नहीं, इसके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। फ़ोन नंबर आपको पता ही है 7018-11-7091। अंग्रेज़ी में अगर कहूँ तो 7018-11-7091।

तो चलिए श्रोताओं, अब हम अपने हाथों की ओर देखते हैं और देखते हैं कि इन लकीरों में आखिरकार ऐसा है क्या।

विधाता फिल्म का गीत अभी आपने सुना सुरेश वाडेकर और अनवर की आवाजों में। दस बजकर 2 मिनट हो चुके हैं और हम आपसे बातचीत कर रहे हैं 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। श्रोताओं, बात तो हम कर रहे हैं लघु उद्योग के बारे में। आज राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस हम मना रहे हैं।

चलिए आइए जानते हैं कि हमारी प्रधानमंत्री जी का क्या कहना है इस बारे में। उनका कहना है कि लघु उद्योग देश के औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और समावेशी विकास में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं और साथ ही छोटे उद्यमों को स्थानीय स्तर पर उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद भी तैयार करने चाहिए ताकि वे वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकें। सरकार ने छोटे उद्योगों की तरक्की के लिए बिना गारंटी लोन, मुद्रा योजना और नियमों के सरलीकरण जैसे कि GST और अनुपालन कम करना जैसे कई कदम उठाए हैं ताकि उद्यमियों को आगे बढ़ने में कोई डर या रुकावट न हो।

भारत सरकार ने 30 अगस्त 2000 को छोटे पैमाने के उद्यमों के लिए एक व्यापक नीति पैकेट लॉन्च किया था, जिसके बाद से ये दिन मनाया जाने लगा। एमएसएमई सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल जैसी कई सुविधाएं अभी भी चल रही हैं। और छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देना और देश के आर्थिक विकास में उद्योगों के योगदान को प्रतिष्ठित करना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। ये क्षेत्र कृषि के बाद सबसे अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है और ग्रामीण विकास में मदद भी करता है।

तो आज के समय में ऐसे कई छोटे व्यवसाय यानी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज और घरेलू उद्योग कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं जिनमें कम पूंजी यानी लो इन्वेस्टमेंट से शुरू करके लोग अपनी अच्छी आजीविका यानी रोजगार के अवसर कमा रहे हैं। और इन उद्योगों को आप अपनी रुचि, बजट और कौशल यानी स्किल के हिसाब से चुन सकते हैं। और ये जो उद्योग कोई भी लगा सकता है, चाहे मेल हो, फीमेल हो, कोई युवा हो हमारे, वो भी कर सकते हैं। कौन कौन से उद्योग हो सकते हैं उसके बारे में हम कार्यक्रम में आगे करेंगे बात। फिलहाल चलिए आपको सुनवाते हैं एक और खटर पटर। अब खटर पटर कौन करता है? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें करती हैं, लेकिन इस गीत में किस चीज़ की खटर पटर हो रही है आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा गीत।

जी श्रोताओ, फिल्म सुई धागा की तरह ही एक या दो सिलाई मशीनों से शुरू करके धीरे धीरे इस छोटे से उद्योग को बड़े गारमेंट बिजनेस में बदला जा सकता है। और इसी तरह से आप मोमबत्ती और अगरबत्ती बनाने का बिजनेस भी कर सकते हैं, वो भी छोटे पैमाने से होता है। आजकल सुगंधित यानी सेंटेड और डिज़ाइनर मोमबत्तियों की मांग त्योहारों और शादियों में बहुत ज़्यादा है और इसे बनाने की मशीनें भी बहुत सस्ती आती हैं। और कौन कौन से उद्योग कर सकते हैं आप, शुरू बताते हैं आपको।

तो सुई धागा फिल्म का टाइटल सॉन्ग अभी आपने सुना, और मुझे लगता है कि इस गीत के बाद आपको शायद ये जिज्ञासा जरूर हुई होगी मन में कि आखिरकार ये कहानी क्या है। तो एक दुकान पर सेल्समैन की नौकरी करते थे, और वो जहाँ उनका मालिक उनका बहुत अपमान करते हैं, और मौजी था उनका नाम, और सबके सामने उनको एक विशेष पोज बनाने और फिर पूंछ हिलाने जैसी हरकतें करने पर मजबूर किया जाता है ताकि ग्राहक खुश हो जाएं। अब जो मौजी की पत्नी थी ममता यानी कि अनुष्का शर्मा, एक स्वाभिमानी महिला रही। जब वो अपने पति का ये अपमान अपनी आंखों से देखती है तो उसका दिल टूट जाता है, और वो कहती है कि भले ही हम कम खाएं कम कमाएं या भूखे सो जाएं, लेकिन ऐसे अपमान सह करके नौकरी हम बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए, आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि जो लोग नौकरी करते हैं उन सभी को अपने कामकाज छोड़ करके उद्यमों की तरफ चले जाना चाहिए, तो कुछ ऐसी एनकरेजमेंट्स हम यहाँ से कर रहे हैं, वैसा नहीं है। परंतु हाँ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कोई भी चीज़ नहीं होती है, इस फिल्म में ये बताया गया है। और फिर वो मौजी को याद दिलाती है कि उसके दादाजी एक बेहतरीन दर्जी थे, और मौजी के हाथ में भी वही हुनर अभी भी है। वो उसे खुद का काम यानी लघु उद्योग शुरू करने की प्रेरणा देती है, और वो अपनी नौकरी छोड़ देता है। ममता के साथ मिलकर के घर पर ही सिलाई का काम शुरू करने का फैसला करता है। और वहीं से खटर खटपट यानी कि खटर बटर गाना शुरू होता है। तो गाने की शुरुआत में तो अपनी पुरानी सिलाई मशीन को ठीक किया जा रहा था, कपड़े कटने की आवाज होती है, सिलाई मशीन के चलने की आवाज होती है, उसके नए जीवन की धुन बन रही होती है। और इसमें यह भी बताया गया कि कैसे उन्हें शुरुआत में कोई काम नहीं मिलता, फिर उन्हें एक अस्पताल से डॉक्टर्स के गाउन और कफन सिलने का एक छोटा सा ऑर्डर मिलता है, दोनों दिन रात मिल करके मेहनत करते हैं, और फिर इसके साथ साथ ही उनके बीच का जो रिश्ता है वो भी गहरा होता चला जाता है। जो पति पत्नी एक दूसरे से खुल करके कभी बात भी नहीं करते थे, वो अब एक व्यापारिक भागीदारी यानी बिजनेस पार्टनर्स बन गए, और सच्चे जीवन साथी बन करके आखिर में उभरते हैं। और आखिर में क्या होता है इसके लिए आप जाइएगा और ये फिल्म जरूर देखिएगा, यहाँ से ही हम आपको सब कुछ बता देंगे, तो फिर आपका भी थोड़ा जो मजा है वो किरकिरा हो जाएगा। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऐसे ही और भी बड़े सारे लघु उद्योग जो हैं वो स्थापित किए जा सकते हैं। हमारी बहनें एक समूह बनाती हैं, उसमें अचार पापड़ इत्यादि जितना भी हो सके वो सब कुछ बनाती हैं, और फिर उनका एक प्रतिनिधि होता है जो कि उसे मार्केट में ले जा करके बेचता है। ऐसे ही टिफिन सर्विस शुरू किया जा सकता है, होम कुक्ड फूड लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, कामकाजी लोगों छात्रों और बैचलर्स के लिए घर का बना खाना सप्लाई किया जाता है, और अब तो हमारे यहाँ पर भी ये सब कुछ शुरू हो गया है। और मशरूम की खेती या फिर टेरेस फार्मिंग भी आप कर सकते हैं। मशरूम की खेती के लिए तो पीएनबी आरसेट्टी जो फर्म है वो भी आप लोगों को ट्रेनिंग देती है, प्रशिक्षण देती है, और पूरी तरह से ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद ही आप कोई भी जो उद्योग है वो करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आपके पास थोड़ी सी खाली जगह है, छत है, तो मशरूम उगा करके बाजार में बेचना बेहद मुनाफे का सौदा हो सकता है। जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि उद्योग तो अभी और भी हैं, और हम आपसे कह रहे हैं अगर आप किसी को जानते हैं जो कि लघु उद्योग करते हैं या फिर आप खुद करते हैं तो हमसे संपर्क बिल्कुल कीजिएगा और हमको बताइएगा, चाहे आप मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू, कि आप किस तरह का लघु उद्योग करते हैं और उसमें आपको कैसी सफलता मिल रही है, या कहीं कोई परेशानी आ रही है तो वो भी आप हम तक रख सकते हैं।

चलिए अब हम आपको सुनवाते हैं एक और खूबसूरत सा गीत, लेकिन गीत कौन सा सुनवाएं जरा ढूंढने में हमें हो रही है थोड़ी सी मुश्किल। चलिए वैसे ये भी एक लघु उद्योग हो सकता है, जो चूड़ियाँ बनाई जाती हैं ना राजस्थान में, तो लाख की बनाई जाती हैं, तो इन चूड़ियों को कैसे बनाया जाता है और इसमें भी बहुत सारे लोग एक साथ लगे होते हैं।

लीजिए जी, तेरे हाथों में पहना के चूड़ियाँ तो मौज बंजारा ले गया। चूड़ियाँ है ना, ये भी अच्छा बिजनेस है ना। हमने कार्यक्रम में ये गीत से पहले आपसे बताया था, आशा भोसले। आवाज में जानी दुश्मन फिल्म का ये गीत आपने सुना। 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप हैं और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। मुझे लगता है कि हमारे आसपास में कोई लघु उद्योग शायद नहीं करता है। घर पर आप शायद कपड़े भी नहीं सिलते हैं और आपके पास में कोई तत्पाई करने वाले या कुछ ऐसे लोग भी नहीं हैं जिनको कि आप काम थोड़ा बहुत हैंडओवर कर सके कि उनसे करवा सके, क्योंकि फ़ोन तो कोई हमें आया ही नहीं और किसी ने शेयर भी नहीं किया कि क्या वो ये काम करते हैं या नहीं करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और लघु उद्योगों की तरफ। साबुन और डिटर्जेंट बनाना भी एक लघु उद्योग है। हर्बल या फिर ऑर्गेनिक साबुन या हैंड वॉश घर पर बनाने का चलन बहुत अब बढ़ गया है। इसके साथ ही डिस्पोजेबल पेपर कप और प्लेट्स भी बनाए जाते हैं। शादियों, पार्टियों और चाय की दुकानों पर इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। हालांकि हम वो थर्मोकोल वाली की बात नहीं कर रहे हैं जो कि बैन हो चुकी हैं, लेकिन और कागज़ की भी बनाई जाती हैं। इसके लिए एक छोटी सी मशीन की आवश्यकता होती है।

और कुछ लघु उद्योगों के बारे में अगर आप जानते हैं जो कि हम यहाँ से नहीं कह पा रहे हैं, तो आप वो भी हमसे साझा कर सकते हैं कि कौन कौन से लघु उद्योग हो सकते हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं। जैसे कि पत्तल मेकिंग भी, अब क्योंकि लोग जो हैं वो डिस्पोजेबल से पत्तलों की तरफ वापस लौट रहे हैं। ब्याह शादियों में तो बहुत सारी पत्तलें लगती हैं ना, धाम में अलग, फिर कोई और अगर फंक्शन करना हो तो उसमें भी, अगर खाने पीने का प्रोग्राम हो तो उसमें अलग। तो सभी लोग जो हैं वो डिस्पोजेबल्स पे खाना भी पसंद नहीं करते हैं। धाम का मज़ा तो हमेशा पत्तल में ही खाने में आता है ना। श्रोताओ, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आप भी हमसे कुछ लघु उद्योग साझा करेंगे जिसके बारे में हमें नहीं पता, शायद हम नहीं बता पा रहे हैं, हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है कोई ऐसा लघु उद्योग जो आपके नज़र में हो, कोई नया हो जो किया जा सकता हो, जिससे सामने आगे सुनने वालों को थोड़ी सी प्रेरणा मिले। तो आप हमसे बात जरूर कर सकते हैं 7-0-1-8-1-1-7-0-9-1 पर।

0: चलिए फिर कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, आपको सुनवाते हैं पुराने समय का ये, मतलब थोड़ा सा पीछे चले चलते हैं और सुनवाते हैं ये खूबसूरत गीत।
1: डोले मनुआ ही आराम में उठत हिलो, अरे पुरुआ के झोंकवा में

जी, गीत भी आपने सुन लिया और उम्मीद करती हूँ कि गीत पसंद आया होगा आप सभी को, और कुछ मीठी मीठी यादों में तो आप भी खो ही गए होंगे। 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो श्रोताओं, बात हो रही है लघु उद्योगों के बारे में। हस्तशिल्प और कला से जुड़े उद्योग भी लघु उद्योग हो सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल

और इसमें मैंने आपको टेलरिंग, बुटीक, मोमबत्ती और अगरबत्ती बनाने के बारे में तो बता ही दिया था, लेकिन जूट और कपड़े के थैले बनाना भी लघु उद्योगों में आ सकता है। और जब हम रिसाइकलिंग की बात करते हैं ना, तो हमारे पास टेलरिंग से जुड़े से बचे हुए जो कपड़े होते हैं उसकी रिसाइकलिंग भी हम कर सकते हैं, उससे भी हम तरह तरह के आइटम्स बना सकते हैं।

और इसी के साथ अब हम चल पड़ते हैं अपने किचन की ओर। जी हाँ, भारत में खाने पीने से जुड़े व्यवसाय तो सबसे सफल माने जाते हैं और इनकी मांग तो हमेशा ही रहती है। तो घर से केक, बिस्किट, कुकीज या फिर ब्रेड बनाकर के स्थानीय दुकानों या ऑनलाइन पर बेचना भी एक लघु उद्योग ही होता है। अचार, पापड़ और मसालों का उद्योग भी करती हैं हमारी महिलाएं। इसके बारे में बात हो चुकी है पहले। इसे महिलाएं घर पर बहुत कम लागत में शुरू कर सकती हैं। शुद्धता और घर के स्वाद की बाजार में बड़ी भारी मांग होती है। आटा सत्तू और बेसन की चक्की भी बनाई जा सकती है। पैकेजिंग मशीन लगा करके खुद का ब्रांड बनाकर स्थानीय बाजार में बेचा जा सकता है। सारे उद्योग तो हमने आपको बता दिए जो लघु पैमाने पर आप कर सकते हैं, और आप भी हमें कुछ बता दीजिए। चलिए, हो सकता है कि फोन लाइन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैसेज तो आप भेज सकते हैं ना, मैसेज ही भेज दीजिए।

हम कर रहे हैं आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार, और इसके साथ ही हम कार्यक्रम में बढ़ रहे हैं आगे। और ये रहा धन दौलत फिल्म का गीत आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल स्वरों में।

दोस्तों एक मैसेज हमको आया है, नाम हमें नहीं पता है, ओडिशा से शायद, और इनका कहना है कि दुग्ध उत्पादन भी एक लघु उद्योग हो सकता है। जी हाँ, ये हमारे दिमाग में नहीं। हमने कहा ना कि हम यहाँ पर जब बैठ जाते हैं हॉट चेयर पर तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दिमाग से उड़ भी जाती हैं। तो आप लोगों का सहयोग रहेगा, साथ रहेगा। तो हाँ, हम सोनू चौहान हैं, सोनू चौहान जी इनका नाम है, और इनका कहना है दुग्ध उत्पादन भी एक लघु उद्योग हो सकता है, और हो सकता है शायद ये करते भी हैं। अगर करते हैं तो प्लीज़ आप मैसेज कीजिए और बताइए कि आपकी जीवन, आपका जो जीवन है इसके बाद आसान हुआ या फिर कुछ मुश्किलें आती हैं। और मुश्किलें हर चीज़ में आती हैं, हम कोई भी नया काम शुरू करते हैं उसमें मुश्किलें आती ही हैं, लेकिन उन मुश्किलों से डर के हमें बैठ नहीं जाना होता है। क्योंकि हम जब कुछ नया शुरू करेंगे तो होता क्या है ना कि अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि नहीं मैं नहीं करता हूँ, मैं आर्मी में हूँ। लेकिन ठीक है, आपने इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, ये भी बहुत बहुत धन्यवाद है आपका और इस मैसेज के लिए। और दोस्तों हम ये कह रहे थे कि जब हम शुरू करते हैं ना कोई भी काम, तो हमारे आसपास के जो लोग होते हैं ना, खास करके घर में अपने ही होते हैं ना, वो हमारी क्षमता पे थोड़ा सा शक करते हैं और उन्हें लगता है कि नहीं भाई, ये शुरू तो कर दिया है लेकिन इसका अंजाम क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पैसे डुबो दे या अपना टाइम वेस्ट करे, या उन्हें लगता है कि हम इन्हें थोड़ा सा समझाएं कि नहीं तुम ये नहीं, कुछ और कर लो, पढ़ाई लिखाई करके कोई नौकरी कर लो। तो कई तरह की प्रतिक्रियाएँ जो हैं वो अपने घर से ही आती हैं, लेकिन अगर हमें यकीन हो और हमारे पास पूरी पूरी स्किल्स हों तो हम क्यों नहीं कर सकते, कुछ काम हम ज़रूर कर सकते हैं। तो आप भी कीजिए और इसी तरह से हमसे मैसेज से या फिर फ़ोन लाइन से जुड़ जाइए। तो ऐसे लोगों से जो कि क्षमताओं पर शक करते हैं, चाहे वो अपने हों या पराए हों, बाहर के हों, कुछ टांगे खींचने वाले हों, उनके बारे में हम ये कहना चाहते हैं, क्यों सुनते हो इन चार लोगों, दफा करो ऐसे बीमार लोगों को। अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पे जियो, ठोकर मारो इन ठेकेदार लोगों को, डुबो देंगे तुम्हें बीच दरिया में ले जाकर। क्यों देनी है अपनी पतवार इन लोगों को, अपनी चमक से खुद चमकना सीखो, मत ढूंढो अंधेरों में यार लोगों को।

0: ये बिल्कुल सही बात है कि प्यार बिना तो जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। धन दौलत बिना चल पड़ता है, लेकिन ज़िंदगी प्यार के बिना नहीं चलती है। आप घर में एक पशु भी पाल लेते हैं ना, उससे भी प्यार हो जाता है, और वो तो जान से भी ज़्यादा फिर हमसे प्यार करता है। बस जितना देंगे उससे ज़्यादा आपको मिलता चला जाएगा।
1: Get it, get it. Party, party.

91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और अब हम थोड़ा सा उद्योगों से निकल करके अंतर्राष्ट्रीय दिवस की ओर चलते हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो हम मना रहे हैं आज अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस, जो कि आपको समुद्रों में देखने को मिलती हैं। ये दिवस इसलिए मनाया गया था ताकि हम इन अद्भुत समुद्री जीवों के बारे में जागरूकता बढ़ा सकें और उसका जश्न मना सकें। कई सारी वीडियोस आप देखते होंगे कि व्हेल्स को ट्रेन किया जाता है इस तरह से ऊंची छलांग लगाने के लिए, और वो दो तीन व्हेल्स मिल करके वो उस तरह की जो मूवमेंट्स हैं वो करती हैं और हम बड़े खुश होते हैं देख देख करके।

अभी तो वैसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी मेरी नज़र पड़ी है, मैसेज हमें और भी आ गए हैं, उस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। फिलहाल शार्क के बारे में जान लेते हैं। व्हेल शार्क की संख्या घट रही है, इसलिए इनकी रक्षा और संरक्षण करना आवश्यक है। ये विशालकाय जीव जलीय जीवन प्रेमियों और समुद्री जीव विज्ञान विज्ञानी दोनों को ही आकर्षित करते हैं, लेकिन इनकी संख्या बढ़ाने और इनके भविष्य को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हमारी ही है। अंतर्राष्ट्रीय व्हेल दिवस का यही एक उद्देश्य है।

और एक 4 बजे के प्रोग्राम के लिए कह रहे हैं कि सचिन भाई का प्रोग्राम उनका तो डायलेक्ट रहता है 4 बजे वाला। जी हाँ बिल्कुल, उनका डायलेक्ट प्रोग्राम रहता है। और हमारी जो शशि जी हैं, शशि जो अभी इस समय मेरे साथ तकनीकी सहयोग मुझे दे रही हैं, उनका भी कार्यक्रम रहता है 2 से 3 बजे, वो भी डायलेक्ट में, यानी कि हमारी कांगड़ी भाषा में, पहाड़ी भाषा में कार्यक्रम करती हैं।

0: तो ये राधा गीत जो आपने सुना 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म का ये गीत था उदित नारायण और श्रेय घोषाल की आवाजों में। आज एक और इंटरनेशनल डे है, जबरन गायब किए जाने के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो कोई भी विदाई को तो हमेशा के लिए नहीं चाहता। जब लोगों को बिना किसी चेतावनी के अगवा कर लिया जाता है और फिर बिना किसी जवाब के छिपा दिया जाता है तो ये जिंदगियों को तहस नहस कर देता है। जबरन गायब किए जाने का मतलब यही है। ये सिर्फ अपहरण नहीं है, अक्सर इसे सत्ता में बैठे लोगों का समर्थन प्राप्त होता है, जिससे न तो कोई सुराग बचता है और न ही किसी को न्याय मिलता है। परिवार वर्षों तक कुछ तो हमेशा के लिए ही बिना किसी खबर, बिना शव, बिना किसी समाधान के इंतजार करते ही रहते हैं। जबरन गुमशुदा लोगों के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इस मौन बीड़ा को सामने लाता है और लापता लोगों को आवाज़ देता है। विश्व भर में ऐसे मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पूरा समुदाय भय में जी रहा है और इस बात से अनजान कि अगला शिकार आखिर कौन होगा। ये दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ध्यान आकर्षित करता है और ये नेताओं को कार्रवाई करने और लोगों को जागरूक होने के लिए प्रेरित भी करता है। इन पीड़ितों को याद करने का अर्थ है चुप्पी को स्वीकार न करना। इसका अर्थ है सच्चाई के लिए खड़ा होना, भले ही वो कितनी ही गहराई में दबी हुई क्यों ना हो। ऐसी कई सारी कहानियां भी आपने देखी होंगी फिल्मों के जरिए जो कि इस विषय पर सीधी सीधी बात करती है। श्रोताओं, और जब कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो आप सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का सहारा ले सकते हैं और बहुत सारी जो समूह हैं वहाँ जाकर के अपनी बात रख सकते हैं। कला के माध्यम से भी आप इन चीज़ों पर बात कर सकते हैं। कुछ भी हो आपके साथ, बात करना बहुत ज़रूरी है। चुप्पी साध लेना इसका कोई समाधान नहीं होता। श्रोताओं, आगे आने वाले दिनों में अब हमारा जन्माष्टमी का त्यौहार भी आने वाला है और जन्माष्टमी राधा और कृष्ण के बिना तो हमेशा अधूरी ही रहती है। ये गीत सुनिए। अब चलते चलते कार्यक्रम में आखिर में आपको सुनवा रहे हैं ये खूबसूरत सा गीत और इसके साथ ही अब ज्योति को दे दीजिए कार्यक्रम से रुखसत होने की इजाज़त। जी हाँ, अलविदा लेती हूँ मैं आप सभी से और फिर से एक बार बता दूं आपको कि इस कार्यक्रम में मुझे तकनीकी सहयोग मिला शशि का और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संदीप परमार। तो चलिए, अब चलने का वक्त हो गया है। आप एंजॉय कीजिए ये गीत। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।
1: कैसे कोई हट गया, मन से लिपट अन

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ, अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो। बिल भर देंगे पापा। माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है। सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और

रिमझिम बरसता भादों का महीना और कान्हा की मीठी बंसी की वो तान, जेल की उस भयानक काली रात में जन्मे जो बने पूरे ब्रह्मांड की शान।

मथुरा में जन्मे, गोकुल में पले और अधर्म का नाश कर दुनिया का किया कल्याण। कारागार में जन्म लिया यशोदा के घर, पले बढ़े और अपनी लीला से जग का किया उद्धार। आ रहा है उसी माखन चोर का जन्मदिन।

0: गुण तो सभी में है, थोड़े तेजी से बढ़े, थोड़े देरी से, थोड़े लंबे तो थोड़े पतले, थोड़े नाटे तो थोड़े तगड़े, थोड़े फल के लिए सब्र कराते, थोड़े तुरंत दिलाते। गुण तो सभी में है, पर जब तक पानी, धूप और मिट्टी ना मिले, ये कैसे बढ़े? काफी बच्चों की भी यही शंका है। सही शिक्षा, पोषण और संरक्षण के बिना ये तारे अधूरे रह जाते हैं। आओ मिलकर बटाए हाथ, देने हर बच्चे को एक हौसला, हर रोज हर बार साथ, तो बढ़ाए एक छोटा सा कदम, भरे इनके सपनों में रंग, और दीजिए इन बच्चों को बढ़ने का बढ़ावा।
1: कर्म कभी किसी का उधार नहीं रखता। आज जो आप दूसरों को दे रहे हो, कल वही आपके पास लौट कर आएगा। चाहे प्यार हो, दर्द हो या धोखा, इसलिए हमेशा अच्छा करो, भले सामने वाला कैसा भी हो, क्योंकि वक्त देर से सही पर हिसाब जरूर करता है।
2: नेहा।
3: हाँ जी।
2: मैं अपने दोस्तों के साथ 5 मिनट होके आ रहा हूँ।
3: हाँ, बस आप हर जगह चले जाते हो, पर कभी मेरे साथ बैठ के मेरे दो शब्द नहीं सुनते।
2: अच्छा बाबा बैठो, सुनाओ अपने दो शब्द।
3: नहीं जाना।
4: ये भगवान क्या जुलूम है,

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ, अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो, बिल भर देंगे पापा।
2: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
2: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
2: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है।
3: सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

रिमझिम बरसता भादों का महीना और कान्हा की मीठी बंसी की वो तान, जेल की उस भयानक काली रात में जन्मे जो बने पूरे ब्रह्मांड की शक्ति।

मथुरा में जन्मे, गोकुल में पले और अधर्म का नाश कर दुनिया का किया कल्याण। कारागार में जन्म लिया यशोदा के घर, पले बढ़े और अपनी लीला से जग का किया उद्धार। आ रहा है उसी माखन चोर का जन्मदिन,

पर्व आइए मिलकर मनाएं हम सब एक साथ। आने वाले जन्माष्टमी पर्व की आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

0: गुण तो सभी में है, थोड़े तेजी से बढ़े, थोड़े देरी से, थोड़े लंबे तो थोड़े पतले, थोड़े नाटे तो थोड़े तगड़े, थोड़े फल के लिए सब्र कराते, थोड़े तुरंत दिलाते। गुण तो सभी में है, पर जब तक पानी, धूप और मिट्टी ना मिले, ये कैसे बढ़े? काफी बच्चों की भी यही शंका है। सही शिक्षा, पोषण और संरक्षण के बिना ये तारे अधूरे रह जाते हैं। आओ मिलकर बटाए हाथ, देने हर बच्चे को एक हौसला, हर रोज हर बार साथ, तो बढ़ाए एक छोटा सा कदम, भरे इनके सपनों में रंग, और दीजिए इन बच्चों को बढ़ने का बढ़ावा।
1: कर्म कभी किसी का उधार नहीं रखता। आज जो आप दूसरों को दे रहे हो, कल वही आपके पास लौट कर आएगा। चाहे प्यार हो, दर्द हो या धोखा, इसलिए हमेशा अच्छा करो, भले सामने वाला कैसा भी हो। क्योंकि वक्त देर से सही पर हिसाब जरूर करता है।
2: नेहा।
3: हाँ जी।
2: मैं अपने दोस्तों के साथ 5 मिनट होके आ रहा हूँ।
3: हाँ, बस आप हर जगह चले जाते हो, पर कभी मेरे साथ बैठ के मेरे दो शब्द नहीं सुनते।
2: अच्छा बाबा, बैठो, सुनाओ अपने दो शब्द।
3: नहीं जाना।
4: ये भगवान, क्या जुलूम है,

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि आपके साथ। इट फील्स लाइक इट्स योर ओन शो, डजंट इट? ऐसा ही चाहती हूं मैं, क्योंकि आप ही के पसंद के गाने यहां पर मैं बजाती हूं। और आज भी कुछ ऐसी ही कोशिश है मेरी, जो कि है हमारे आज के स्पेशल आर्टिस्ट मशहूर एक्टर फारूक शेख जी की ही फिल्मों के। फारूक जी बॉलीवुड में एक ऐसे एक्टर थे जो हाईली और माइन्यूटली ट्रेंड थे, यानी कि छोटी से छोटी चीज इन्हें एक्टिंग के बारे में समझ में आती थी। हमने इनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को एंजॉय किया है इन मूवीज लाइक गर्म हवा, उमराव जान, बाजार, साथ साथ एंड सो ऑन। अपने करियर में लेकिन इन्होंने सिर्फ 30 से 35 फिल्में ही की हैं। विश्वास नहीं होता ना, इतनी दमदार इनकी परफॉर्मेंस जो रही थी। वैसे आपको पता है कि हर फिल्म साइन करने से पहले ये अपने आप से 3 शर्तें रखा करते थे। क्या थी वो शर्तें, इसका जवाब आपको कुछ देर के बाद में मैं बताऊंगी, लेकिन उसके पहले आप सुनिए बहुत ही खूबसूरत गाना फ्रॉम द फिल्म साथ साथ। जगजीत जी की आवाज में ये गाना है, गाने का नाम तुमको देखा तो ये ख्याल आया।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ, और आज हम बात कर रहे हैं द वेरी टैलेंटेड एक्टर फारूक शेख जी के बारे में। इन्होंने ऑलमोस्ट सारे जॉनर्स में कोई ना कोई रोल तो किया ही है, कभी ना कभी किसी ना किसी फिल्म में, ड्रामा हो, कॉमेडी हो, रोमांस हो, कुछ भी हो। लेकिन कोई भी फिल्म साइन करते वक्त फारूक जी अपने आप से तीन सवाल पूछा करते थे, अपने सामने तीन शर्तें रखा करते थे। पहली शर्त ये कि वो फिल्म उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। दूसरी शर्त, उनके रोल को ही सारा अटेंशन मिलना चाहिए। और तीसरी और आखिरी शर्त कि उनके डायरेक्टर के प्रति उनका विश्वास खूब होना चाहिए। अपने करियर को सिंप्लीफाई करने के लिए वो खुद का सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी समझते थे, और इन्हीं शर्तों की वजह से उन्होंने हिट पे हिट फिल्में इंडस्ट्री को दी हैं। फारूक जी को कभी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी वो क्लास में टॉप किया करते थे, और अपने कॉलेज के दिनों में भी वो लेक्चर्स में कम और कैंटीन में ज्यादा हुआ करते थे। क्या आपको पता है फारूक जी एक वेल क्वालिफाइड लॉयर भी थे, अपने इस फील्ड में वो खुश भी थे। लेकिन उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया जिसके बाद उनका इस फील्ड में से मन उठ गया। ऐसा क्या हुआ था कि अच्छी खासी नौकरी छोड़ करके उन्होंने फिल्मों की तरफ अपना रुख कर लिया, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले सुनिए आप फिल्म नूरी से अगला गाना लता जी की आवाज में।

वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप वीकेंड क्लासिक रेडियो शो मेरे याने रुचि के साथ। बजा रही हूँ कुछ बढ़िया प्यारे गाने फारूक शेख जी की ही फिल्मों से आज आपके लिए, और उन्हीं की जिंदगी के बारे में आपको कुछ ऐसी बातें बता रही हूँ जो कि शायद आप ना जानते हो। जैसे द एवरग्रीन फारूक शेख अपने करियर के शुरुआती दिनों में लॉयर हुआ करते थे। कोर्ट में डिबेट करना, किसी केस को सॉल्व करना उन्हें बहुत पसंद था। और तो और, फारूक के पिताजी भी एक लॉयर ही थे, तो उन्हें भी अपने डैड के फुटस्टेप्स को फॉलो करना था। मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज में उन्होंने एक लॉ की डिग्री हासिल की थी और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद कई सारे केसेस भी हैंडल किए थे। लेकिन बहुत जल्द उन्होंने ये रियलाइज किया कि एक लॉयर होने का मतलब कोर्ट में कम बैठना है और पुलिस स्टेशन में ज्यादा समय बिताना है, और पुलिस स्टेशन का माहौल उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता था। क्राइम की बातें सुनना, यूं ही नेगेटिविटी के आसपास रहना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए उन्होंने ज्यादातर ये क्राइम से जुड़ी हुई फिल्में भी नहीं की, हमेशा स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप की अच्छी सी नॉर्मल हंसती मुस्कुराती हुई फिल्में करना पसंद किया करते थे फारूक जी। तो इस चीज से डिसअपॉइंट होकर के उन्होंने एक क्वालिफाइड लॉयर होने के बावजूद उसे छोड़ दिया और एक्टिंग को अपनाया। लेकिन अपनी पहली फिल्म फारूक जी ने फ्री में की थी। किसके लिए की थी ये फिल्म और क्यों फ्री में की थी बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले उमराव जान फिल्म से अगला गाना तलत अजीज जी की आवाज में आपके लिए।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। फारूक शेख जी की जिंदगी के बारे में आज मैं आपको कुछ बता रही हूं। अक्सर ऐसा होता है कि एक्सपीरियंस लेने के लिए हम अपने करियर के शुरुआती दिनों में कम पैसे में या मुफ्त में भी काम कर लिया करते हैं। फारूक शेख जी ने तो शबाना आजमी जैसी एक्ट्रेस के साथ एक्टिंग में ट्रेनिंग ली थी, उनके साथ मिलकर ये प्लेज किया करते थे। ऐसे अच्छी एक्टिंग स्किल्स होने के बावजूद भी उन्होंने फ्री में अपनी पहली फिल्म की थी। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि डायरेक्टर MS सत्यू फिल्म गरम हवा के लिए एक एक्टर ढूंढ रहे थे, लेकिन उनके पास कुछ बजट नहीं था, तो वो चाहते थे कि कोई ऐसा एक्टर हो जो कि फ्री में काम करे। एक तरफ जहां MS सत्यू एक एक्टर ढूंढ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ फारूक जी एक मूवी ढूंढ रहे थे। दोनों का कुछ मिलाप हो गया इस तरह कि उन दोनों ने साथ में फिल्म कर ली और फारूक शेख जी को भी बिना कोई सवाल जवाब के ये रोल मिल गया। और बस उस रोल के बाद एक के बाद एक उन्हें फिल्में मिलना शुरू हो गई। ऐसे आप जानते हैं फारूक जी एक टाइम पर बस एक ही फिल्म किया करते थे और उन्हें ये नहीं चाहिए था कि उनके मरने के बाद कोई उन्हें याद करे। ये बड़ी अजीब सोच है, ऐसा क्यों सोचते थे वो बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर। फिलहाल सुना रही हूँ आपको गाना आशिक हो तो ऐसा हो फ्रॉम द फिल्म नूरी।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप मेरे यानी रुचि के साथ, और आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही टैलेंटेड एक्टर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्टर्स एंड सीनियर मोस्ट एक्टर्स जो रहे हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, फारूक शेख जी के बारे में। फारूक जी का हमेशा ये सोचना था कि इंसान जब तक जिंदा है उसे सिर्फ अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीने का सोचना चाहिए, ना कि अपने पास्ट की मिस्टेक्स को याद करना चाहिए या फिर ये सोचना चाहिए कि फ्यूचर में क्या होगा या मेरे चले जाने के बाद लोग मुझे किस तरह से याद करेंगे। हर कोई इस दुनिया में आता है और चला भी जाता है। जब तक आप हैं और आपके बारे में लोग अच्छी या बुरी बातें करते हैं तब तक तो कुछ मतलब बनता है। आपके चले जाने के बाद कोई आपके लिए ट्रिब्यूट रखे, आप पर फिल्म बनाए, आप तो इन सब चीजों को देखने के लिए जिंदा रहेंगे नहीं, तो इसका क्या मतलब है। वो जिंदगी को आज ही सेलिब्रेट करने में विश्वास करते थे, इसीलिए उन्होंने अपना टीवी शो भी शुरू किया था जिसका नाम था जीना इसी का नाम है। आप जानते ही होंगे कई सारी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज इस शो का हिस्सा बन चुकी थी और काफी फेमस भी था ये टीवी शो। इनफैक्ट मैं फारूक जी की जिंदगी के बारे में भी बस यही कहूंगी कि जीना इसी का नाम है। सुनाती हूँ आपको अगला गाना फिल्म गमन से हरिहरन जी की आवाज में। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक।

एक गांव है पटवाई, जहां आकाश और रोहन नाम के दो दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कपड़े के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम बने जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा चार गंदा को साफ कर चुके

0: 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में कडप्पा के वरदराज और तमिलनाडु में कोडाई कनाल के चंद्रशेखरन के उल्लेख किया, जो एवोकाडो की खेती के जरिए अतिरिक्त कमाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच ताशकंद में द्विपक्षीय वार्ता जारी है। राष्ट्रपति भवन में दोनों नेता व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा कर रहे हैं। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उज्बेकिस्तान योग महासंघ के योग कार्यक्रम में भाग लिया। बाद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने अपने आवास पर श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हो गई है। लगभग 2,500 लोग लापता हैं। आपदा के पांचवें दिन भी बचाव कर्मी लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटे हैं। बचाव दल ने अब तक 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। भारत से अब तक 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान काठमांडू पहुंच चुका है। इससे पहले भारत ने 3 विमानों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी। उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बालेश्वर में लगातार वर्षा के कारण सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिमी बंगाल और उत्तरी उड़ीसा तटों पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण ये बारिश तेज हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि निम्न दबाव का क्षेत्र और अधिक तीव्र होकर पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने आज और कल उड़ीसा में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ।
2: अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो। बिल भर देंगे पापा।
1: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है।
3: सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

रिमझिम बरसता भादों का महीना और कान्हा की मीठी बंसी की वो तान, जेल की उस भयानक काली रात में जन्मे जो बने पूरे ब्रह्मांड की शान।

मथुरा में जन्मे, गोकुल में पले और अधर्म का नाश कर दुनिया का किया कल्याण। कारागार में जन्म लिया यशोदा के घर, पले बढ़े और अपनी लीला से जग का किया उद्धार। आ रहा है उसी माखन चोर का जन्मदिन,

जन्माष्टमी पर्व आइए मिलकर मनाएं हम सब एक साथ। आने वाले जन्माष्टमी पर्व की आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से हार्दिक

0: गुण तो सभी में है, थोड़े तेजी से बढ़े, थोड़े देरी से, थोड़े लंबे तो थोड़े पतले, थोड़े नाटे तो थोड़े तगड़े, थोड़े फल के लिए सब्र कराते, थोड़े तुरंत दिलाते। गुण तो सभी में है, पर जब तक पानी, धूप और मिट्टी ना मिले, ये कैसे बढ़े? काफी बच्चों की भी यही शंका है। सही शिक्षा, पोषण और संरक्षण के बिना ये तारे अधूरे रह जाते हैं। आओ मिलकर बटाए हाथ, देने हर बच्चे को एक हौसला, हर रोज हर बार साथ, तो बढ़ाए एक छोटा सा कदम, भरे इनके सपनों में रंग, और दीजिए इन बच्चों को बढ़ने का बढ़ावा।
1: कर्म कभी किसी का उधार नहीं रखता। आज जो आप दूसरों को दे रहे हो, कल वही आपके पास लौट कर आएगा। चाहे प्यार हो, दर्द हो या धोखा, इसलिए हमेशा अच्छा करो, भले सामने वाला कैसा भी हो, क्योंकि वक्त देर से सही पर हिसाब जरूर करता है।
2: नेहा।
3: हाँ जी।
2: मैं अपने दोस्तों के साथ 5 मिनट होके आ रहा हूँ।
3: हाँ, बस आप हर जगह चले जाते हो, पर कभी मेरे साथ बैठ के मेरे दो शब्द नहीं सुनते।
2: अच्छा बाबा बैठो, सुनाओ अपने दो शब्द।
3: नहीं जाना।
4: ये भगवान क्या जुलूम है,

दोस्तों मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूं आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

0: 291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन कार्यशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिता के साथ। तो आइए श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।
1: दे नाल बात पौन लाती वे सादगी पसंद तुझ जान लाती वे

दोस्तों इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.2 MHz पर। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। बिल्कुल आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों पंजाबी गीतों का कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी आशी दोस्त रुचिका के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला पंजाबी गीत।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया बिल्कुल, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का कार्यक्रम अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और पंजाबी गीत की तरफ। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ,
2: अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है। और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो, बिल भर देंगे पापा।
1: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है।
3: सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

रिमझिम बरसता भादों का महीना और कान्हा की मीठी बंसी की वो तान, जेल की उस भयानक काली रात में जन्मे जो बने पूरे ब्रह्मांड की

मथुरा में जन्मे, गोकुल में पले और अधर्म का नाश कर दुनिया का किया कल्याण। कारागार में जन्म लिया यशोदा के घर, पले बढ़े और अपनी लीला से जग का किया उद्धार। कारागार में जन्म लिया यशोदा के घर, पले बढ़े और अपनी लीला से जग का किया उद्धार। आ रहा है उसी माखन चोर का जन्मदिन।

0: गुण तो सभी में है, थोड़े तेजी से बढ़े, थोड़े देरी से, थोड़े लंबे तो थोड़े पतले, थोड़े नाटे तो थोड़े तगड़े, थोड़े फल के लिए सब्र कराते, थोड़े तुरंत दिलाते। गुण तो सभी में है, पर जब तक पानी, धूप और मिट्टी ना मिले, ये कैसे बढ़े? काफी बच्चों की भी यही शंका है। सही शिक्षा, पोषण और संरक्षण के बिना ये तारे अधूरे रह जाते हैं। आओ मिलकर बटाए हाथ, देने हर बच्चे को एक हौसला, हर रोज हर बार साथ, तो बढ़ाए एक छोटा सा कदम, भरे इनके सपनों में रंग, और दीजिए इन बच्चों को बढ़ने का बढ़ावा।
1: कर्म कभी किसी का उधार नहीं रखता। आज जो आप दूसरों को दे रहे हो, कल वही आपके पास लौट कर आएगा। चाहे प्यार हो, दर्द हो या धोखा, इसलिए हमेशा अच्छा करो, भले सामने वाला कैसा भी हो, क्योंकि वक्त देर से सही पर हिसाब जरूर करता है।
2: नेहा।
3: हाँ जी।
2: मैं अपने दोस्तों के साथ 5 मिनट होके आ रहा हूँ।
3: हाँ, बस आप हर जगह

0: चले जाते हो, पर कभी मेरे साथ बैठ के मेरे दो शब्द नहीं सुनते।
1: अच्छा बाबा बैठो, सुनाओ अपने दो शब्द।
0: नहीं जाना।
2: ये भगवान क्या जुलूम है।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ए तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर होई हो कार्यक्रम लेके माटी दी महक तां श्रोताओं कर देने कार्यक्रम दा आगाज इस प्यारे दे गीते कन्ने तुहां सारे इन्ने बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला कन्ने गूंज अपने बंदी

सारेंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला इन्हें तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक आशोताओं बढ़ देना कार्यक्रम जग गए इन्हें सुन देनी कोर प्यारा दिया गीत।

धर्मशाला ते कने तुहां सारिआं ट्यून कीते है अपना समुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला। कने इस वक्त कार्यक्रम चलिआ है माटी दी महक, श्रोताओं सुनदे ने इक और प्यारा दिया गीत।

तो हाँ सारे ट्यून कितने है अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तो हाँ सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक ता श्रोताओं बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुनते निक और प्यारा दिया गीत।

वक्त तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दो शशि करने ता श्रोताओं बढ़ते न कार्यक्रम चगे कने सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो तो शशि कन्ने तो बढ़ दिन कार्यक्रम च आगे कने सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

सारे दा रेडियो गुंजन धर्मशाला तने तो हां सारे कार्यक्रम सुना देन माटी दी महक आशो तो बढ़ते न कार्यक्रम चल गए तने सुन दे निक और प्यारा दिया गीत।

हाँ बोला थे ना रेडियो गुंजन धर्मशाला थे कने तो हाँ सारे ट्यून किते है अपना समुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है माटी दी महक श्रोताओं सुन दे एक और प्यारा दिया गीत।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो हाँ सारे ट्यून कितने है अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला। मैंने तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक। तो श्रोताओं बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुनते निक और प्यारा दिया गीत।

सारे दा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तो हां सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महक कहां श्रोताओ अज कने कार्यक्रम च बस इतना ही तो हां सारे ने बने रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला कने गु

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ,
2: अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है। और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो, बिल भर देंगे पापा।
1: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है। सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

रिमझिम बरसता भादों का महीना और कान्हा की मीठी बंसी की वो तान, जेल की उस भयानक काली रात में जन्मे जो बने पूरे ब्रह्मांड की।

मथुरा में जन्मे, गोकुल में पले और अधर्म का नाश कर दुनिया का किया कल्याण। कारागार में जन्म लिया यशोदा के घर, पले बढ़े और अपनी लीला से जग का किया उद्धार। आ रहा है उसी माखन चोर का जन्मदिन।

पर्व आइए मिलकर मनाएं हम सब एक साथ। आने वाले जन्माष्टमी पर्व की आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

0: गुण तो सभी में है, थोड़े तेजी से बढ़े, थोड़े देरी से, थोड़े लंबे तो थोड़े पतले, थोड़े नाटे तो थोड़े तगड़े, थोड़े फल के लिए सब्र कराते, थोड़े तुरंत दिलाते। गुण तो सभी में है, पर जब तक पानी, धूप और मिट्टी ना मिले, ये कैसे बढ़े? काफी बच्चों की भी यही शंका है। सही शिक्षा, पोषण और संरक्षण के बिना ये तारे अधूरे रह जाते हैं। आओ मिलकर बटाए हाथ, देने हर बच्चे को एक हौसला, हर रोज हर बार साथ, तो बढ़ाए एक छोटा सा कदम, भरे इनके सपनों में रंग, और दीजिए इन बच्चों को बढ़ने का बढ़ावा।
1: कर्म कभी किसी का उधार नहीं रखता। आज जो आप दूसरों को दे रहे हो, कल वही आपके पास लौट कर आएगा। चाहे प्यार हो, दर्द हो या धोखा, इसलिए हमेशा अच्छा करो, भले सामने वाला कैसा भी हो। क्योंकि वक्त देर से सही पर हिसाब जरूर करता है।
2: नेहा।
3: हाँ जी।
2: मैं अपने दोस्तों के साथ 5 मिनट होके आ रहा हूँ।
3: हाँ, बस आप हर जगह चले जाते हो, पर कभी मेरे साथ बैठ के मेरे 2 शब्द नहीं सुनते।
2: अच्छा बाबा, बैठो, सुनाओ अपने 2 शब्द।
3: नहीं जाना।
4: ये भगवान, क्या जुलूम है,

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओ, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ।
2: अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो। बिल भर देंगे पापा।
1: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है। सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

रिमझिम बरसता भादों का महीना और कान्हा की मीठी बंसी की वो तान, जेल की उस भयानक काली रात में जन्मे जो बने पूरे ब्रह्मांड की

मथुरा में जन्मे, गोकुल में पले और अधर्म का नाश कर दुनिया का किया कल्याण। कारागार में जन्म लिया यशोदा के घर, पले बढ़े और अपनी लीला से जग का किया उद्धार। आ रहा है उसी माखन चोर का जन्मदिन,

जन्माष्टमी पर्व आइए मिलकर मनाएं हम सब एक साथ। आने वाले जन्माष्टमी पर्व की आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

0: गुण तो सभी में है, थोड़े तेजी से बढ़े, थोड़े देरी से, थोड़े लंबे तो थोड़े पतले, थोड़े नाटे तो थोड़े तगड़े, थोड़े फल के लिए सब्र कराते, थोड़े तुरंत दिलाते। गुण तो सभी में है, पर जब तक पानी, धूप और मिट्टी ना मिले, ये कैसे बढ़े? काफी बच्चों की भी यही शंका है। सही शिक्षा, पोषण और संरक्षण के बिना ये तारे अधूरे रह जाते हैं। आओ मिलकर बटाए हाथ, देने हर बच्चे को एक हौसला, हर रोज हर बार साथ, तो बढ़ाए एक छोटा सा कदम, भरे इनके सपनों में रंग, और दीजिए इन बच्चों को बढ़ने का बढ़ावा।
1: कर्म कभी किसी का उधार नहीं रखता। आज जो आप दूसरों को दे रहे हो, कल वही आपके पास लौट कर आएगा। चाहे प्यार हो, दर्द हो या धोखा, इसलिए हमेशा अच्छा करो, भले सामने वाला कैसा भी हो, क्योंकि वक्त देर से सही पर हिसाब जरूर करता है।
2: नेहा।
3: हाँ जी।
2: मैं अपने दोस्तों के साथ 5 मिनट होके आ रहा हूँ।
3: हाँ, बस आप हर जगह चले जाते हो, पर कभी मेरे साथ बैठ के मेरे दो शब्द नहीं सुनते।
2: अच्छा बाबा, बैठो, सुनाओ अपने दो शब्द।
3: नहीं जाना।
4: ये भगवान, क्या जुलूम है,

0: 92.2 MHz पर तू है नेक्स्ट टाइम रेडियो गुंजन सीते ते रेडियो गुंजन अंदर एक कार्यक्रम तू हु हुन्ना भी सौगी रेडियो गुंजन रिजल्ट इन दी ऐप आता ती अंदर एक कार्यक्रम तू सु एक ना भी ते श्रोताओ आज जड़ा खास प्रोग्राम आए या ही है बल्ली की जड़े खास मेहमान स्टूडियो अंदर इन तीन ही ते तुम दी मुलाकात करने आ ते मुझे पूरी उम्मीद आ कि तस खास मेहमान ही ते मुड़े गए तुसी हो बड़ी उत्सुकता मुड़े आ ते बड़े सारे सवाल भी इन बड़े सारे मन उरे मन अंदर की कह कि श्रोताओ बलदिन आ है कि तई कह ही ना पहाड़ जीत ले हुआ या तई के जिंदगी में कह कुछ बड़ा कर ले हुआ तो आज इन स्टूडियो अंदर आके ऐसे मेहमान है ऐसी शख्सियत इन जिन्हे जिंदगी अंदर वाकई पहाड़ जीतुरा अते ना सिर्फ इन ते हिमाचल रहा बल्कि पूरे इंडिया रा नाज या सो पूरी दुनिया अंदर रोशन कर रहा अते सो इन दे जड़ी युवा पीढ़ी आ युवा बच्चे त्यारे तारे बड़ी बड़ी प्रेरणा री स्रोत इन ता आइया तुंदी मुलाकात करवांदे इन दे आज के जड़े खास मेहमान इन तीन ही ते अंजलि शर्मा। अंजलि बहुत बहुत स्वागत है रेडियो गुंजन अंदर तुंदा।
1: थैंक यू मैम।
0: ते तुंदे बारे अंदर मिंजो ता उत्सुकता थी जानने री इजड़ी तुंदी पर्वतारोहण री जड़ी यात्रा ता एती रे बारे अंदर गलबात करनी आ हूँ इस कार्यक्रम अंदर पर जड़ी तुंदी शुरुआती जिंदगी है पहले तड़ियों शुरू कर दे कि तू है कड़ी अरे रहने वाले इन कड़ी जन्म छूरा ते शिक्षा जड़ी प्रारंभिक सो कड़ियों छो रहे
1: बेसिकली दरीनी साइड बड़ा पिछड़ा ग्रां दूली
0: जी
1: जी मेरा जन्म हुआ तो ते अक्की महीने बाद फिर जड़े मेरे पेरेंट्स थे सो मिंजे लेके चले धर्मशाला क्योंकि इस साइड कमरा कोई स्त्रोत ना हो तो मेरे जड़े पेरेंट्स थे तो इतने कैपेबल भी ना थे कि औतिड भी के अन कर सके तो मेरे पापा मम्मी चले आए तो मुझे मोटी बहन भी है मेरी सो तीन साल मोटी मुझे हूँ तो सो मैकलोडगंज चले आए तो मेरे पापा डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी अंदर जॉब करी पहले होटल अंदर करी फिर पानी के डिपार्टमेंट च करी ते तिस ते बाद फिर एक छोटा जना बिजनेस स्टार्ट करूं मेरा मम्मी ते पापा है।
0: अच्छा
1: ते मेरे मम्मी पापा तने पीनट बटर बनांदे है क्योंकि तुसी पता अंग्रेज इंदे जेड़ी पीनट बटर जैम और टाइनी मिंट टी वगैरह ते सो मम्मी जो भी सिखाओ ते तिस ते बाद जेड़ा है मेरा पापा जी ऑटो लाइन अंदर गए तीना ऑटो चलाओ तो मम्मी मेरे थोड़ा थोड़ा मतलब बिजनेस कर दे ऑन कर दी गई। मेरे पापा एक्चुअली बड़े बड़ी शराब पीते थे मतलब तो मेरी मम्मी ने इतना हार्ड वर्क करा कि मुझे तो मेरी बहनी जो अक सेटल लाइफ दितुरी अक अच्छी तो सब तक मतलब मेरी मम्मी है कि मुझे प्रेरणा मिलती एक्चुअली बहुत स्ट्रांग लेडी है। तो फिर इसके बाद फिर मेरे पापा टैक्सी चलाई मम्मी किसी लाइन अंदर काम कर दी गई अपना ते फिर 2009 अंदर जी मेरे फादर दी डेथ हुई गई बहुत छोटी एज अंदर थी 14 साल की थी तने आठवीं में पढ़ती थी ते गर्ल्स स्कूल पढ़ती थी एक्चुअली अंदर और मेरी सारी स्टडी जड़े गवर्नमेंट आ हुई छू रहा ऐसा नहीं कि प्राइवेट इंग्लिश स्कूल है गवर्नमेंट सरकारी स्कूल
0: जी।
1: फिर मेरे पापा डेथ होने बाद मेरा आठवीं बाद क्यूटू चू क्योंकि मेरा अटैचमेंट काफी तो मेरे फादर होगी तो बाद थोड़ा माइंड डिस्टर्ब फिर डिसीजन लियो कि थोड़ा बाहर कर दे कोर्स होंदा माउंटेनियरिंग का फिर मुझे सो करने ताई मनाली भेजू स्पॉन्सरशिप लगी फिर मनाली चली गई तो इसी पास मतलब डरी गई मैं बेसिक करूँ 26 डे रहा फिर मैं एडवांस करूँ फिर मैं एमओआई करूँ तो एमओआई करने वाला कैपेबल उच गया आप एज ए लेक्चरर टाइप की फिर इसके बाद फिर मैं गवर्नमेंट इसी अंदर जॉब करना स्टार्ट की लेकिन मुझे पर डे रही हिसाब मतलब पे कर देते थे।
0: अच्छा
1: सभी मैकलोडगंज आरएनसी करके इंस्टीट्यूट मनाली री सब ब्रांच तो मेरी मम्मी भी कीप इसी अंदर ही काम कर दी गई फिर मैं काम करू फिर मैं अपने 15 साल उम्र बाद अक पैसा भी ना मांगू घर मम्मी हूँ कोई बर्डन ना दी तू जी मैं कमाओ अपने घर भी दी तू जितना भी अर्न कर दी थी।
0: अच्छा।
1: वन डे रहा मुझे स्टार्टिंग कर दू 250 रुपये इतने मिलते थे मुझे गवर्नमेंट खाना पीना रहना दी थी तो जी हाँ वेदी जी आर एम सी जी धर्मशाला इंदा गाइड कोर्स भी होंगे थे तो ती एरना की ज्यादा कोई है ही नहीं ना एक्चुअली अंदर कि मुझे ना पता कि पेरेंट्स को ना भेज देता है मैक्सिमम में तेरी गोबरू वेरा है ज्यादातर मैं बाहर आ रही कुड़ी ए रही मतलब जियां एज अ ट्रैकिंग था इंडिया एडवेंचर कोर्स चलता जेडी काम करने बाद फिर मैं अपनी स्टडी भी कंप्लीट करी मैं ग्रेजुएशन करी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करी लाइब्रेरी अंदर थोड़ा धीरे धीरे हालात मतलब ठीक कुछ गया घर रहे क्योंकि त्राई लेडीज मेरे फादर दे आगे पीछे कोई भी ना जी वो रिश्तेदार कोई मदद कर दे ऐसा कुछ भी नहीं है शायद
0: सो वक्त वक्त जने पेंदा ना ताने पता लगता अंजलि की कौन अपना ते कौन वदाना और बड़ी इंटरेस्टिंग श्रोताओं ए गलबात आ शुरुआती दौर अंदर अंजलि वल्लू की हल्की उम्र अंदर पापा ना रहे थी है आ समझी सकते खास कर सो कुड़ी जा रहे की बुढ़े नान या बह हो पहले अक्की बुढ़े रा गाना आते बह हो बाद जने तुम अपना परिवार सैटल बुझी चूरा हूं तो है अपने परिवार सैटल बुंदी पर कुआरी कुड़ी जने मां या बुढ़े ना रेंदे तो सो खैर मां बुढ़े तो बड़ा बुढ़ा बल्ले सकते कि ईश्वर रे बड़ी बड़ी इनायत आ पर बह हो पहले अगर सुना रेंदे तो दुनिया जी असो पूरी हिले गंदे तो ये चीज में मैं फील कर रही हूँ अंजलि कहे कि मेरा बहन और शुरू तथियो पहले मेरे फादर साहब जी ये सो अत अक अटैचमेंट हुंदे आ खास कर बूढ़े ही ते जड़े इन दी गपशप हुंदे आ ते इन दे जड़े बूढ़े हुंदे ते न्यों सी ते जड़ी उम्मीदा हुंदी न सडनली सो अद्धी बत्ता इन दा साथ छड़ेगा ता दुख ता हुंदा या अत सोगी सोगी क्या बोलदे आ है ये मैं ना बल्ले सकदे कि इन दे मां बूढ़े इन दे ताए कुछ ना करू अपनी कैपेबिलिटी रे हिसाब है जी तू ये बोलू है कि सो पहले पीनट बटर बनंदी है तथियों बाद तीजे स्विच करू दुए बिजनेस मां ता मतलब टाइम टू टाइम टाइम वाले हिसाब तीजे भी अपने आप जो बदल ले डाल ले कोशिश करे करे तो ए चीज कर खरे कर अंजलिया है हिरते तो असि अंदर भी चले दे कि इन दे मां बुढ़े कर वर्दन क्या रहा टाइम बेचारे का पुराना तू तो कुछ भी सुविधा ना थी पर हालात तेरे हिसाब है जी जी आगू बद दिन सो असि कुछ ना कुछ सिखा या ए थोड़ी गंभीर थोड़ी इंटरेस्टिंग थोड़ी इंस्पायरिंग जड़ी इन बातचीत ए जरूर चलने आता तीन पहले जड़े इन श्रोता तीन अंजलि एक गीत बहनाना ता अंजलि री पसंद रा कोई गीत जी सो हुना वे अंजलि
1: मुझे गद्दी गाना अजय बरमोरी रा बहुत अच्छा लगता मिंजो बरमोरी
0: गमते मिंजो बरमोरी गमते डिल्ली डिल्ली गात्री वाले जरूर अंजलि अंजलि की पसंद रहा गीत हनाना ते जड़े इन हुनने वाले ने इस कार्यक्रम जो सो भी इस गीत तरह आनंद उठा ते सौगी सौगी आहू बातचीत रहा भी आनंद उठाना श्रोताओं

0: चलो अंजलि, तो इस गीता हो बाद अबे फिर तुंदी जीवन दी जड़ी जर्नी है, ते पर्वतारोहण दी जड़ी जर्नी है, इतियो फिर यह शुरू करते हैं। ता है पूछ रहे थी ये कि इन दा जड़ा माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट आ धर्मशाला अंदर आ, ते बड़े सारे मनु पता भी नहीं है इन दी कई कुलीन जड़ी पढ़ू लिखू करती, पर तीनो आए नहीं है दिमाग अंदर की है ए ए ऑप्शन करी सकते करियर अंदर, पर आ कोर ऑप्शन आ जड़ा की माउंटेनियरिंग आते अंजलि ये प्रूव करी दी थोड़ा। अंजलि आवे आगू हरी गल बात कंटिन्यू कर दें कि पतियों बाद की है तू आगू बढ़े
1: जी हमें काम करना स्टार्ट करूं तो सत्य जी स्पोर्ट्स कैटेगरी इस टाइम जो आक ट्रैक पजामा टी शर्ट शूज जींदन आऊं फिर भी कैपेबल।

0: क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव थे। आख डल्ले का तेरी आख स्टोर आ पड़खाना एक्चुअली तेरी लांबे अपना
1: टिबेटन।
0: हाँ जी
1: हाँ अच्छा।
0: तेरी लांबे जड़े ना अपने सारे जड़े यूज कर रहे कपड़े सुथ हो गए हैं। तो आओ अपनी मम्मी होगी गंदी जड़ी क्योंकि मेरी मम्मी जड़ी शीशी द जार लेके इंदा है ना क्योंकि तुसी पैकिंग कर दे फिर सो गर्भे की दूनी ता गंदी मो तेरी कपड़े छांटने ते मो तेरी पजामा लेना ट्रैकिंग रहा टी शर्ट लेनी ते सो मो वॉश करके सो लगाना
1: यूज करना है।
0: बिल्कुल ते मैं सो सिचुएशन बेर रहा। तिस ते बाद फिर धीरे धीरे नॉलेज आऊ फिर आ प्राइवेट सेक्टर अंदर गई। मुझे पता चलो कि प्राइवेट अंदर ज्यादा पैसा मिलता तो आक दिल्ली हूँ कंपनियां तो सो पैसा दिंदी थी पर डे साहू 800 रुपया। तो मैं तेरी काम करना स्टार्ट करू शिमला थी नारी ब्रांच ही जूंगा तेरी काम करू 800 रुपया बहुत ज्यादा लग दो
1: फर्स्ट टाइम रे सब है बाकी ठीक तू अर्थ हो
0: जर्नी रसो दिन दे खाने पीने रा तो फिर और बहुत अच्छी लाइन है एक्चुअली अंदर रिस्पेक्ट वाले बच्चे के सामने मुंह लेक्चर देना फिर मु बेस बढ़ाना फिर तीन एडवेंचर एक्टिविटी करवाने बहुत कुड़ी ताई बहुत अच्छी लाइन है पर इस ताई डीपली गाना पैंदा। फिर जिस ते बाद फिर मैं एक फॉर्म फिल करू दिल्ली विच के स्पेशल वैसे मैं धर्मशाला हूँ भी मतलब बाय पोस्ट कर रू तू रख दिल अंदर डाउट क्योंकि शायद मैं जो मतलब सो सिलेक्ट कर ना कर क्योंकि तड़ी हूँ सिलेक्ट होना बहुत बड़ी गल है फ्री रख लाए मैं माउंटेन मुड़ना तुसी हो सब कुछ देना खर्चा देना है क्योंकि लख रहे सब खर्चा आंदे ना कर माउंटेन क्लाइम करने ताई। फिर पर्सनली फर्स्ट टाइम दिल्ली गई आऊ तो मेरी बहन दिल्ली गए कोई थू ना कोई इतना जानने वाला तो फिर जेडे मेरे मतलब खास मतलब फ्रेंड्स वगैरह हाँ भैया जो लेके गई क्योंकि तुसी पते है आप जॉइंट फोना बहुत जरूरी है क्योंकि दुए सिटी अंदर गाना फर्स्ट टाइम चल रहे हैं। फिर आते ही ऑफिस अंदर मैं रिक्वेस्ट करी दो हाथ जोड़ के बोलो प्लीज मुझे आप मौका दे क्लाइमिंग ताई। फिर तीन मुझे मौका दी 2017 अंदर
1: अच्छा
0: तो मैं धौलाधार दी हाईएस्ट माउंटेन क्लाइंबिंग करू हनुमान टिब्बा से हाइट 5,932 मीटर का टेक्निकल माउंटेन है तो मैं सो क्लाइंबिंग करू। फिर इसके बाद थोड़ा थोड़ा और नॉलेज ही ना स्टार्ट हो जाऊ फिर हम मनाली प्राइवेट सेक्टर अंदर एक्सपोडिशन फिर ट्रैकिंग के बाद एक्सपोडिशन इसलिए आई क्योंकि आप लालच थी किसी अंदर और ज्यादा पैसा मिलता या और ज्यादा अर्न कर ली या फैमिली जो थोड़ा सपोर्ट करी पा ली जितना मेरे अपने एफर्ट्स थी ना। फिर जब ज्यादा पैसा मिलना लगो फिर जब आप क्लाइंब करने लगी धीरे धीरे आऊ क्लाइंब कर दी मैं टेक्निकल माउंटेन बहुत क्लाइंब कर रहे पर सो इतना पॉपुलर नहीं है। मैं एज ए मतलब अल्पाइन भी करू अल्पाइन क्या होता कि अपना सारा सामान खुद ही चुकना से रूट ओपन करना मतलब कि तुम देखा अंदर पूरा एटलीस्ट 30-35 kg मेरा बैग होता तो फिर मैं सो क्लाइंब करू। फिर मेरी नन्नी जी सो बरमोरा हूं गद्दी ना टिपिकल तो मेरी नानी दसती थी कि ऐसे भी जोत क्रॉस कर दिया था बल्लू नौचड़ी लाई करी फिर मेरे दिमाग का आई मेलू नौचड़ी इतनी है भी मतलब क्या क्लाइम कर
1: इतनी मोटी नौ इतनी बड़ी नौचड़ी ताकि ऊपर डोरा फिर अगर गल करिए पुराने जमाने में तो गहना गठा भी बंदा हो करे सो त्योड़ी लाई करे तूड़ा है वो करने तो आजकल है मॉडर्न लग रहा बुना था नौचड़ी सटी त्री पुचो होता है सो चोड़ो डोरो को नहीं रहे बट तुम ये गल बड़ी इंटरेस्टिंग है तो हुनना चाहते तो हुनाना चाहते फिर अच्छा नन्नी हो गई यार तुम्हारे दिमाग के अंदर।
0: हाँ जी अब फिर आप ट्राई करना चाहती कि इस टाइम अगर सो क्लाइंबिंग कर दे तो पासिस कर दे थे तो हम अपनी चांस लेकर हेर दिया। फिर मैं आपको माउंटेन क्लाइंब करू यू नो सिर हाइट 6,811 मीटर दिया तो मैं तिड़ी सो मां चढ़ी लाके ट्राई करू तो बहुत ही डिफिकल्ट एक्चुअली अंदर मुझे ना पता इंदर पुराने जेडे बुजुर्ग से सो किया कर दे था पर जो एक्चुअली तो मैं खुद लाई तो मतलब मुझे बहुत डिफिकल्ट लगो तो मतलब इनके अंदर सो इतनी पावर नहीं है जो जड़ी पावर
1: पहले बुजुर्गों थी। हाँ
0: बिल्कुल
1: पर अंजलि तुसी डिफिकल्ट है बेशक लगू बुला पर अक विश्व रिकॉर्ड है जड़ा तू आ छड़ी डोरे लाए करे जड़ा जो सो बनाई थ्रू है ये सिर्फ ना इन गद्दी कम्युनिटी रहता है खुशी ते मतलब उत्साह रा बल्ले सकते पल ला बल्कि पूरी दुनिया अंदर तू है गद्दी कम्युनिटी नुआचड़ी माणू जिन्हों पता भी ना होना कि क्या होंगे तीन सब भी पता कि नुआचड़ी लाए करे तिरंगा फहराना इतनी उच्ची चोटी पर बड़े गर्व री गल ए गल करे करे पूरी दुनिया अज तुसी जानवर ते आते तुंदा जड़ा जिंदगी रा सफर आए भी बड़ा इंटरेस्टिंग आ श्रोताओ बड़ी सारी कुली हुंदी इंदे समाज अंदर इंदे कल्चर अंदर जड़े की मध्यम वर्गी परिवार अंदर हुंदी न या पतियों भी थोड़ा लो परिवार ही हुंदी न बल्ली सकदे आए घट हुंदे आ पर सुपने दे बड़े तगड़े हुंदे न ते कई बारी कुछ एक इन जड़ा पूरा करी पांदी न ते सोई पूरा करी पांदी जड़ी की हिम्मत ना हारदी जिया कि अज अंजलि इंदी सौगी ते अंजलि ते गल बात करे कि बड़ा अच्छा लगो तो अंजलि अवे आगू मेरा सफर भी तू हा सौगी सौगी आ गीत भी हनाना और कोई गीत तुंदी पसंद रहा
0: तेरा मेरा लगन सजना
1: चलो जी तेरा मेरा लगन हड़ाई देना।

0: श्रोताओ तेरा मेरा लगन गीत तू हुणुआ ते अंजलि जड़ी इंदी पर्वता रोहन इंदी बेटी आ इंदी देव आ हाई ते गलबात पुछोते आ स्टूडियो अंदर अते की है डिफिकल्टी पार करी करी दिन अपना ये सफर तय करू तेरे बारे गल करो दिन इस गीता हूं मिंजा कोर दिमागा ख्याल आ की लगन आरी गल पुछोते ता हाल ही मा रिसेंटली पिछले साल ही ना अंजलि पिछले साल ही अंजलि रा बै बुआ थू बड़े सारे इंदे पले सकते न समझदार मनु दिन्या ट्रॉल भी करू बड़े पुट्ठे सीधे कमेंट भी करे ताती अंजलि ऊपर प्रभाव कैब हुआ अते ए तेरे बारे में बाद ना गल करनी है फिलहाल ए गल करनी है कि जड़ा इंदा जवाई आ असी सिर्फ गद्दी रा जवाई बल्ली या हिमाचल रा जवाई बल्ली ए ठीक ना होना बल्कि सो पूरे इंडिया रा जवाई है इंदा अंजलि इंदे जवाई रा ना के अते बल्लू सेरा ना के अते ग्रां के असो भी असी रस्सा
1: मेरा हस्बैंड दा नाम आइवस कैजुका फ्रेंच नेम सो क्रिश्चियन और सो ईस्ट अफ्रीका इंदा बहुत प्यारी कंट्री आ रवांडा
0: अच्छा
1: बहुत ही नीट एंड क्लीन कंट्री आ थोड़ी वहां बड़ा कुछ सीखी जरूरी की सफाई
0: बहुत जरूरी
1: है सो सिविल इंजीनियर न हाल ही अंदर सो यूएस अंदर जॉब करते यूएसए कंपनी वर्क
0: तुम भी जड़े बल्दे सो मुलाकात कड़ी हुई थे किया सफर आगू बढ़ू
1: मेरी मुलाकात मॉस्को अंदर हुई थी रशिया अंदर जड़ा वो सेकंड अपना क्लाइम करना चाह रही थी मैं एक्चुअली अंदर दो कॉन्टिनेंट क्लाइम कर रहा जड़ा पहला कॉन्टिनेंट जी मैं तंजानिया अंदर क्लाइम कर रहा जड़ा अफ्रीका अंदर और तिसते बाद फिर आऊ रशिया अंदर गई थी एक माउंटेन एल्ब्रुस मिजो चिड़ी मुड़े थे सो एयरपोर्ट पर जस्ट एक नॉर्मल ही गलबात हुई थी जी हाँ से दुए देश अंदर पूछते हैं जिड़ी चेकिंग होंगी इंदी पूछते हैं पर्पस किया तुम दही नेरा जस्ट ऐसे बे रहते हैं तो डिस्कशन कर ली कि जो क्या कुछ हुआ मिंजो क्या कुछ हुआ जस्ट नॉर्मल ही आप ऐसे फ्रेंड गाली थी फिर इंद इंस्टाग्राम एक्सचेंज हुआ है फिर नॉर्मली गाल कर दे फिर वाइब्स मिलना स्टार्ट हो जाएगी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे प्रपोज करो सीधा डायरेक्ट बात आई कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बुलाओ कोई इंटरेस्ट नहीं है इंदी वाइब मन कर दी आखी दुए जो अच्छे की जान कर दे ता हम बैक करना पसंद कर ला तो मैं बोलू थोड़ा टाइम क्योंकि हम कॉन्टिनेंट अनदर कॉन्टिनेंट बैक करना लग रहा बहुत डिफरेंट हर एक चीज सो आप प्योर डीएनए आक भारतीय तो पेरेंट्स को मनाना बड़ा आक डिफिकल्ट काम
0: जड़ा इंदा जवाए सो थोड़े पक्के रंगा रहा अंजलि जी सो हिमाचल रहे अवे तुसी पता धौलेदार रहे एटमोसफेयर अंदर पल रहे तो थोड़ी गोरी चिट्टे मन को थोड़ा इना मिस मैच लगता पर श्रोताओ जड़े तुंदे ट्यूनिंग मिली गिंदे तुंदे दिल का कनेक्शन बनी गिंदा तुंदे मेंटेलिटी सेम हुंदे तो फिर गोरा काला ये कणक बंदा ये सब कुछ साइडा रह गिंदा अक जेड़ा कंपेनियन सो तुसी कतूड़ा समझदा कतूड़ा तुंदा साथ दिंदा ए गल बड़ी जरूरी हुंदी है ना अंजलि
1: जी बिल्कुल मेरे हस्बैंड दी सोच बहुत अच्छी क्लियर आ डिसिप्लिन बहुत आ कि ये ना कि ऑर्डर देना मुझे कोई बहुत ही डिसिप्लिन अंदर आ मैं शायद अपने कजिन भी ना रहे इतना डिसिप्लिन अंदर जितना मैं अपना हस्बैंड ही रहो डिसिप्लिन अंदर और सो मुझे इतना सपोर्ट कर देने कोई चीज मतलब थोपनी नहीं मुझे कि ना ना तू यही करना ना तो अपने हिसाबों जी खुली कर जी तू जड़ा करना लाइफ है तू सो कर कोई ऑर्डर ना रही
0: आक सवाल अंजलि आक जे इन गादे अंदर वाले ना कि आहे ता दबंग टाइप पहाड़ा चढ़ने वाला है ठीक है ते दुआ जड़ा इन सौगी है साथ है सो आई टी अंदर आई टी ही रिलेटेड आ इंजीनियरिंग फील्ड आ तुम तो दुनिया का जरा अलग अलग काम आ ए तेरी वजह हूं तना कदी या लगू कि थोड़ा मतलब सेम वो होना चाहू मतलब सेम प्रोफेशन होना चाहू या कुछ ही ना
1: ना ऐसा कुछ भी ना क्योंकि मेरा स्टार्टिंग में थॉट था कि मुझे सेम जी क्लाइमर है मुझे क्लाइमर होगी बैक करना क्योंकि एज ए क्लाइमर में सो चीज है कि दो तीन बारी मौत रहू हम भी वापस चूरिया चाहती कि जरा मेरा पार्टनर है उसको भी सेम लाइन ही हुआ क्योंकि ये जड़ी क्लाइंबिंग लाइन है सो बहुत ही एक डिफिकल्ट है जो क्लाइंब करते तो ना पीछे नहीं हिरद है कि अगर ऐसे इनकेस अगर चिड़ी मरी गया कुछ भी मिस हैपनिंग असें यह नहीं हिरदा कि इंदा पीछे कोई हारना असें फ्री क्लाइंब करना क्योंकि असें मतलब ये लाइन चुन रहे क्योंकि अस दुए ताई चुन रहे कि अस दुए जो क्लाइम करवाना खुद भी क्लाइम करना क्योंकि माउंटेनियर अंदर कोई भी एप्रिशिएट ना करता जी हाँ टॉप पुजे मैं जो खुद ही एप्रिशिएट करना कि मैं ये अचीव कर क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ लगी है पूरी और सोगी में और क्लाइंबर जो भी रूट ओपन करके दिता तो फिर से बहुत सारी मतलब डिफिकल्टी ना मरने के चांसेस बहुत होंगे ना हाई एल्टीट्यूड अंदर इसलिए मेरा स्टार्टिंग माइंडसेट टू क्लाइंबर होगी ना बैक करना चाहे कोई भी होगा
0: चलो ठीक है तुंदा दोनी रा जिंदगी रा जड़ा डिसीजन आ ता जिंदगी रा जड़ा शादीशुदा जिंदगी रा सफर आ है उम्मीद कर दें ते दुआ कर दे कि अच्छा सफल रहा ते आग सवाल और एक छोटा अंजलि मन अंदर जड़ा तुंदा बै है बुआ थू ता तू अनु आचड़े लो रहे थे ते जड़ा इंदा जुआ है पूरा सफा सुफा हेरा लाए करे ता बड़ा एरे करे भी खरा लग गुरदू की पूरा इंडियन कल्चर अंदर हुआ तो इंडियन कल्चर अंदर भी इन जड़ा गादा कल्चर गल करिए है ता उन्हों आचड़े लाने आता है जड़ा लाड़ा ता सी अलग पहनावा ट्रेडिशन दे हिसाब ते सो बड़ी ईमानदारी ही ते ही वाज एंजॉयिंग ऑल द रिचुअल्स सो एरे करे लग गुरदा थू ता बहरे दौरान कह थू त्यारा वो रिव्यू
1: बड़ा कंफ्यूज है मैं ऐसा कुछ ना दस रोज स्टार्टिंग अंदर कुछ कुछ वीडियो भेजी थी कि संदूरी लाना पिंडा मतलब राउंड फेरे होंगे तो थोड़ा बहुत इन इंडियन बारे नॉलेज आ पर मैं बोलू मेरा जरा ट्रेडिशनल सो बहुत ही डिफरेंट है मतलब मुंह इस हिसाब होना तो जो सर लाना पैना मतलब बहुत ही कम कर सकते बोलो ठीक है बोलो इतनी कोई टेंशन ना ले मेरे हस्बैंड ने ठीक है जी बोले बोलू थी मुंह कर लेना बोलो
0: चलो बड़ा अच्छा लगे होने करे आते श्रोताओ नेगेटिविटी री गल ना करना चाहते पर थोड़ा ही ना वो लेना जड़े अंजलि रा बैब हो तेरे दौरान कुछ एक वीडियोस वायरल हुई ही तती अंदर यार जड़ा मैरिड कपल आ तीनों ले करे मन में बड़ा ही पुट्ठा सीधा बल्लू थू ते इवन आऊं तो अंजलि को जानते बिना थी पर मिंजो एज ए वुमेन बल्ली या जो भी आ इन द कल्चर सब कुछ जुड़ रहा थी तो मिंजो सो जो कमेंट इन तिंजा पढ़ी करे बड़ा दुख बुझो क्योंकि मनु ने सोच इस लेवल तक भी खिंची सकते मतलब ऊपर ना बनूंगा कि तूड़ा डाउन भी सोची सकते मनु तो अंजलि अज सौगी अंजलि हो पुछना थोड़ा ही पुछना गया कि बल्द नेगेटिविटी का तू जिक्र कर तो सो फैल दिया बट वी आर हेयर टूडे पॉजिटिविटी तो पॉजिटिविटी फैलाने के पाए सो कुछ एक बड़ा खतरनाक नेगेटिव कमेंट थी है तेरा कुछ असर पे तू
1: बहुत असर पे तू जी कि 25 तारीख को मेरा ब्याह हुआ कितने तक मुझे कुछ पता ना था कि क्या चल रहा सोशल मीडिया अंदर 26 तारीख को जी मेरी विदाई हुई असर चली गए होटल अंदर फिर इवनिंग टाइम जस्ट मैं चेक करू यहाँ फोन तो हाँ जी चेक करू थी मतलब मेरे ही मतलब न्यूज आई ना फिर मैं पर्सनली अपना इंस्टा ओपन करूँ क्योंकि मैं ही कुछ ऐसा पोस्ट ना कर रहा था तो मनु पर्सनली की चीज करी मैं जो गाली दी चू कर देना अब्यूज कर देना मेंटली बहुत ही हरास हो चुक रही थी उस चीज तो आओ लिटरली मतलब रोना लगती तो मेरा हस्बैंड कंफ्यूज कोई रोना लगे फोन ना हेर गया सखिया तो तिनी फोन हेरू क्योंकि कमेंट जरा था सो इन हिंदी अंदर था इंग्लिश अंदर ये कर रहा ना था मेरा हस्बैंड जो सो ट्रांसलेट करी करी की पढ़ना फिर मेरा हस्बैंड ने बहुत मुझे ना पता सो अजीब गल करी पर मुझे उन्हें की बुरी लगी बोलू तेरे बोलू देश शर्म बोलू एजुकेटेड नहीं बोलू पोर्टर लिख रहे नहीं बोलू इतना की मतलब सो इस तरह की चीज बोलू कर दे बोलू क्योंकि बोलू शायद बोलू मेरी कंट्री कोई फर्क ना पिया बोलू एज तू व्हाइट वुमेन मिंजो की बैक करूंगा तो मेरी कंट्री ऐसा कोई फर्क ना पड़ना तेना बहुत एप्रिशिएट करना क्योंकि यूरोप साइड आ रहा भी उची गया यूएसए साइड आ रहा उची गया व्हाइट टिपिकल व्हाइट पीपल भी ब्लैक होकर बैक कर दे तो तेना कोई फर्क ना पड़ता और मेरा हस्बैंड बहुत ही शॉक था मतलब इतनी अच्छी सोच खड़ी हूँ लेंद्र बोलू तो तेना बोलू तू इतनी टेंशन मत ले छड़ पर है बोलना देना जो फिर भी थोड़ा लगता क्योंकि मैं अपने पूरे एफर्ट्स पूरे मैं क्लाइम कर रहा मैं अपने तय ना कर रहा मैं अगर गद्दी कल्चर जो रिप्रेजेंट कर रहा इंडिया जो रिप्रेजेंट कर रहा दूसरी कंट्री अंदर गिच करी सो मैं अपने स्वार्थ तय ना कर रहा हाँ दसना चाहती हाँ उसी कम्युनिटी को बिलोंग कर दिया इनका ये पहनावा बहुत ही अच्छा पहनावा इसी अंदर मुझे मन नहीं सकते मुझे कोई फायदा नहीं है कि मुझे बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया कोई कुछ नहीं है जड़ी मेरी स्पॉन्सर आई बहुत ही लिमिटेड आई मिंजो क्योंकि सारा मतलब जिन्हें स्पॉन्सर करने वाला थी ना ही इन्वेस्ट कर दू तो मेरी तरफ हूँ मैं ऐसा कुछ भी ना तू आऊ एज ए क्लाइंबर कुछ रही थी मेरा मोटिव थू अपने गद्दी कल्चर जो रिप्रेजेंट करना क्या गद्दी कल्चर आऊ इंडिया एक्चुअली आऊ टिपिकल ऐसे गद्दी भी नहीं क्योंकि मेरे फादर जेडे ने सो जानद ब्राह्मण ते मेरी मम्मी गद्दी ब्राह्मण ते मिंजो गद्दी वो एक्चुअली लिटरली बहुत लगा हुआ मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कल्चर तो मैं इतना करूँ फिर मिंजो लघु दिलापुर लगी कि मनु इतना की बल्ली सकते
0: चलो अंजलि एक हताश निराश बुने रही कोई भी गल नहीं मनु बल्ली सकते न पढ़े लिखे मनु अगर इंज ने कमेंट करी सकते सो खरा भी लिखी सकते थी हालांकि ए सोचना चाहिए कि तूड़ी हल्के ने ग्रां थो निकले करी कोले घड़ी खिंच करी तुंदे देश सारे झंडे गाड़ वरदे आहे सो ना एरू मनु है पर नेगेटिव कमेंट करने है खूब दड़ा दड़ इवन मैं जिया कि बल्लू है कि आऊं ताना तकर बिल्कुल भी ना जानते कि अंजलि घड़ी आऊ मिंजो भी ना पता कि ईवन इंदे कोले है ते इंदे ही धर्मशाला री रहने वाले है ए ता आकी टट्टी साला री रिसर्च तो बाद मिंजो पता लगू कि अंजलि धर्मशाला री आ ता चलो इतियो है ये बदली सकते कि अपनी यह सोच बदली सकते थोड़ी नहीं कि हर उतरी इंसान दी भी पॉजिटिव ते नेगेटिव जड़ी छवि बुंदे आ सो बुंदे आ पर अगर कोई खरा करोड़ा ना सिर्फ अपने ताए अपनी कम्युनिटी ताए बल्कि पूरे देश सारे ताए अगर तूड़ी दूर खिंची करी इतनी मेहनत करी करी कुण खी वाकई इंद्र झंडे फिर आवरदे आ ता असि थोड़ा पॉजिटिव सोचना चाहिए कि इंदा बच्चा तूड़ा करोड़ा ता है तो असि एपरीशिएट कर आते अगर पूरे हिमाचल थो अक को निकले कर ये कर सकते तो इनकी बाकी कुड़ी भी है प्रेरणा देन अंजलि साक्षात सबूत है कि अक कर सकते अक अंजलि अगर पर्वतारोहण अंदर अपना ना कर सकते तो इनकी और भी बड़ी सारी अंजलि जड़ी की अले लगुरी मोटना सो भी कर सकते हैं अंजलि अब ये पूछना कि जिया कि एडिया तू पूरा इंडिया अंदर अपना मतलब परचम फहराऊ इंडिया अंदर ही ना बल्कि विदेश अंदर
1: स्टार्टिंग में मैं क्लाइम करूँ मैं दो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे ना तो मतलब मिंजो अक सिर्फ क्लाइम करने के बाद हिमाचल गौरव मिलू मिंजो दिल्ली अंदर तीसरे अंदर अक अमाउंट मिंजो दी तू 11,000 का जड़ा मान सम्मान दी तू से बहुत अच्छी गल है जी अगर आप क्लाइंबिंग लाइन अंदर आ क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है तो शायद मुझे थोड़ा और सपोर्ट कर सकते था आऊ हिमाचल ताए इंडिया ताए कुछ और आगे कर सकती थी तो मतलब सपोर्ट बहुत जरूरी है मतलब और मुझे जितना भी डोनेशन मुड़ रहा सबर मोरा हूँ मुड़ रहा एक्चुअली ना कुड़ी सपोर्ट करना जरूरी है कुछ सपोर्ट कर देना शायद 10 कुड़ी और इंदी 10 कुड़ी और इंदी तो मान सम्मान बढ़दा कुड़ी रे माँ बुढ़े रे भी बढ़दा सीते सरकार दा भी बढ़ता तो सरकार जो शायद मतलब डिसीजन लेना पैना कि युवा ताई कुछ ना कुछ करा स्पोर्ट्स कैटेगरी अंदर क्योंकि मैं ये रहा कि स्पोर्ट्स कैटेगरी बहुत कम कोड़ी मतलब नहीं सकता 2011 अंदर में ही MI कर रहा तो पहली ही कुड़िया डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा अंदर इसके अलावा कुड़िया शायद कर रहा बेसिक कर रहा और तीन सो खत्म करी तरी स्टोरी अपनी ना ती ना अगे कोर्स करू ना काम करू ना समझने की कोशिश करी तू ना तेरी स्टॉप करी तू अब प्रेशर कुछ चीज दा शायद एज दा प्रेशर होला सो द मिंजो बाकी अंदर ना पता या फिर फैमिली का प्रेशर होला कि अक एज अरे अकॉर्डिंग लाइफ सेट करनी बैरी मतलब बहुत जल्दी डिसीजन ले लेंदे पेरेंट्स की ना तुम 25 साल उम्र च गया अब अक उम्र चले आए बैक करने तो शायद कुड़ी थोड़ी मतलब स्टफ कर दिंदे और तू ये गल कीजी आवे कोर्स हुंदे न एडवेंचर देड़ी गाइडेड कोर्स हाल ही अंदर हुआ फ्री रा कोर्स है 14 दिन तक गवर्नमेंट दे अंडर रहना खाना पीना सब कुछ देना ट्रेनिंग ले और ती सर्टिफिकेट दी इतनी वैल्यू है ना अगर सो कुड़ी गोबरू डिफेंस लाइन अंदर गंदा तो 5 नंबर मिलते मैम किसी चीज डर है तो मतलब इस बारी गोबरू थे कुड़ी थी ना घर का सो कुड़ी कौन थी मिंजे भी समझ ना आई एक्चुअली मेरे गुरु जी भी रहे ना मनाली मैं गल करी मैंने ये तो बड़ी मतलब सोचने वाली गल है कि धर्मशाला फ्री रहा कोर्स चल रहा और कुड़ी नहीं थी अंदर
0: शायद थोड़ा इना इना चीजा रा प्रचार भी ना पूछ बंदा अंजलि मिंजो ये लगता अते बुना चाहिदा ताकि इनकी कई कुड़ी ऐसा नहीं है कि हर कोई फैशन ते उतरी एडवरटाइजरी दुनिया अंदर है कई इन जड़ी की इंजन एडवेंचरस करना चाहती पर थोड़ा कही जानकारी ना मिले बंदे एतरी जानकारी हुआ था जरूर एती करन मेरी जड़ी युवा बहनी कुड़ी सो अते अंजलि ये बोलू कि भरमौरा हो बड़े तगड़ी इंजा सपोर्ट मिल रही थी सभी भरमौरी बहन भाई ना बहुत बहुत शुक्रिया ये अल्ले भी बड़े मुकाम इन अंजलि हासिल करने जड़े भी करने ते देश दुनिया अंदर अगर एह उमरी ना करी चुक रहा इने वाले टाइम अंदर बड़े बलू बड़े ओ जितने ना बड़े पहाड़ जितने जेडे की झंडा फहराना आछड़ी लाए करे अंजलि गपशप बड़ी इंटरेस्टिंग आ बड़ा मजा छोड़ता अंजलि अवे गलबात मुँह ए पुछना की खास कर कुड़ी रे ताए फेरे कि आ तू है जहां उम्री शुरू कर दो सो तो बड़ी हल्की उम्र थी 14-15 साल आजकल 14-15 साल के 20-22 साल रहे बच्चे भी थोड़े हल्के है बलते कि निकड़े नले निकड़े न कुड़ी रे ताए कि तू है एडवाइस कर दे कि अगर सो माउंटेनियरिंग फील्ड अंदर गाना चाहती कहना शुरुआत करना चाहती है किया किया करना चाहती है शुरुआत
1: जी हाँ क्लाइंबिंग लाइन अंदर गाना तो सबसे पहले स्ट्रांग होना वैसे तो हिमाचल की पुलिस स्ट्रांग ही होती ना पर इसी लाइन गाने तक रिसर्च करना पैनी ऑनलाइन चेक करना पैना कोर्सेस बहुत ही इम्पोर्टेंट अगर आओ हल्की उम्र अंदर ये चीज कर सकते ना और आओ 2010 और 2011 की गल कर दी जिस टाइम में कोई सोशल मीडिया इतना ज्यादा ना होता नॉलेज ना होता तो आज के टाइम में तो सोशल मीडिया नॉलेज फुल कुछ भी सर्च करा चलिंदा तो मुझे लगता है सर्च करा और इसी लाइन अंदर अच्छा बहुत अच्छे स्कोप ने आगे बिच करी तो बहुत बड़ा नाम कर सकता अपने पेरेंट्स का अपना खुद रा मुझे वाला ऑप्शन बहुत उस सकते थे क्योंकि आप कुड़ी थी आपके हल्की उम्र अंदर शायद आओ 18 सालों के बाद बह भी कर सकती थी अपने पेरेंट्स छड़ी करी आओ नटी के कर सकती पर तुम्हें ती ना करो अगर अपने पेरेंट्स को सपोर्ट भी करना पैंदा और दूसरी गल अपनी मेहनत जो दसना पैंदा कि हाँ आओ अब कैपेबल हाँ इस चीज अंदर मुझे नहीं लगता कि शायद कुछ अजीब थॉट लेके अगर तुझे चल रहा है तो मैंने काम अपना तो सेटल आपको थॉट रखा कि मुझे चीज करने और उसे प्रूफ कर अपने पेरेंट्स को और पेरेंट्स ताई हम कुछ बोलना चाहती क्योंकि तुझे अपने बच्चों इतना नाजुक मत बना क्योंकि आज के टाइम अंदर 20-22 साल 21-25 साल रहते बच्चा स्टिल बच्चे तीनों बच्चा मत बोला सो बहुत ही समझदार दिमाग था कुछ भी कर सकते न क्योंकि मुझे लगता है जिन्हें वाले पेरेंट्स ने अगर सो सपोर्ट करना तीनों अपने पेरेंट्स का फायदा जुड़ना चाहता
0: बिल्कुल
1: क्योंकि तीनों वाले अच्छी इनकम तीनों पेरेंट्स बोला मुझे ये चीज करनी सपोर्ट करा मिंजो और क्लाइंबिंग लाइन अंदर गाना तो तुसे कोर्स करा जो इंडिया अंदर इंस्टीट्यूट
0: शुरुआत जरा इंदा धर्मशाला रहा है सो कड़ी ने सो इंदा जरा एरने वाला श्रोता ने
1: जी
0: एग्जैक्ट लोकेशन तेरी कह रहा हूँ तो तीन ची पैदल इंडिया में जो पता पर तू है जरा दस से दिया कि कड़ी ने सो इंस्टीट्यूट ते किया किया रीच कर सकते हैं
1: अगर तुझे स्टार्टिंग अंदर है ना कि मुझे बोला कितनी कैपेसिटी है तो तुझे स्टार्टिंग अंदर एडवेंचर कोर्स करा गाइड कोर्स करा 14 दिन रहा सो तो धर्मशाला मैकलोडगंज ऊपर जी धर्म कोटारा शॉर्टकट रास्ता गंदा आर एस
0: हयात वाला रोड
1: जी बिल्कुल हयात होटल
0: हयात जो सभी जानते हैं ना मैकलोडगंज तो पैदल शॉर्टकट तक रास्ता खड़ी चढ़ाए थोड़ी तो सो चढ़ाए तो सीधा सिंधे की तू क्लाइम कर सकते कि ना तो तड़ी लेफ्ट साइड तेरा इंस्टीट्यूट आ और मिंजो भी थोड़े साल पहले पता लगू तो जने पता लगू तो मेरे मुन्नी हल्की ही मैं ही सो ले रही ही तो मैं लुकाश ये चीज पहले पता होंगे तो शुरुआत अंजलि तड़ियों कर सकते ना
1: जी बिल्कुल तड़ियों ना गाइड कोर्स करके फिर तुसी अथॉरिटी मिल जाते हैं एलकल का क्लाइम करने लाइसेंस होंगे एज ए गाइड तुसे ट्रैक करवा सकते क्योंकि विदाउट गाइड अगर उसे एलकल का ट्रैक भी कर ले तो मिस हैपनिंग कुछ करते हैं फिर तिसते बाद अगर तुसी लगदा कि मिंजो अंदर सो पावर हा तो तिसते बाद तुसे फिर ही पूरे इंडिया अंदर 5 इंस्टीट्यूट ना नेम जिम और मनाली जड़ा अभी मास करके रहा तुसे ऑनलाइन सर्च कर सकते अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट जेडी फैसिलिटी भी इन द डिस्ट्रिक्ट वाइज स्पॉन्सरशिप मिलती है क्योंकि मैं खुद 3 टाइम स्पॉन्सर ले रहा तो फ्री अंदर कोर्स कर बट तुसी सो ऑनलाइन चेक करना पड़े टाइम टू टेबल और तुसी अंदर बेसिक कोर्स जेड़ा 26 डेज रहा हुंदा फिर तुसी अंदर पूरी क्लियर हो जांदा कि तुसी पहले कितना स्टैमिना हा कितना तुंदा आईक्यू हा पूरा सो फर्स्ट एड भी दसते न, रोप भी दसते न कि जेड़ा हजार्ड सी ने तुसे की क्लियर करने। अगर शायद अगर तुसे क्लाइंबिंग लाइन ना गाना चाहते पर फिर भी तुसे एक कोर्स करा, क्योंकि कोर्स दसता डिसिप्लिन, क्योंकि से जना भी गंदे आकर टिप गच्छू मेरा बैग हूं सीते हूं अगर कुछ खावा थ्रो ना कर दिया और हमेशा अपना बैग अपन दिया। तो ट्रैकिंग क्लाइंबिंग बहुत कुछ सिखन दिया तुम्हारी आम जिंदगी अंदर क्या करना। तो तुझे सो कोर्स करा और ए ग्रेड लेने के बाद फिर एडवांस होंदा, एडवांस बहुत लेवल दा होंदा, तुसी पूरा टेक्निकल दसते कि तुसे किया पहाड़ चढ़ने, क्योंकि पहाड़ एक ऐसी चीज है ना कि असें पहाड़ दसले कि असें बड़ा स्ट्रांग न, पर पहाड़ हमेशा झुकाई देंदे न चीज में ये रखो। तो टेक्निकल होना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद अगर तुसी लगता कि मुएजेल लेक्चर मतलब दसना बिलकुल लेक्चर और बढ़ना जैसे एम आई करा तुसी अंदर टोटल ही तुसी लेक्चर देना पैने न और तुसी अंदर तुसी आक प्रोजेक्ट देना तुसी अंदर तुसी ओ क्लियर करना पैना। तो इसके बाद तुसे फिर आक इंस्ट्रक्टर निकल के निकल देना जी।
0: अच्छा तो अंजलि यशोताओ ते दर्शको पूरा पूरा दस इता बात की किया किया पहाड़ चढ़ना ते कै कै स्टेप पिन तू धर्मशाला रह अगर रहने वाले तो धर्मशाला होने शुरू करी सकते हैं फिर अगली सीढ़ी या मनाली तत्यों बाद ऑल इंडिया लेवल रे इंस्टीट्यूट इन तड़ी तू है जड़े न गिच करे अपना ये माउंटेनियरिंग रहा अगर तू दस सपना तो सी पूरा करी सकते हैं। ते अंजलि पहाड़ वाली गप लग रही है ते अक इंदी सिंगर आ गीत पूरा बड़ा छैल की लिस सीजन गए जोत की लाना सुगीत हूं ना तू जी श्रोता रीता पुरहान भी बड़े जोत लंघ रहे सौगी सौगी सारा प्यारा ही ना मिट्टी नी आवाज अंदर गीत हूं फिर कार्यक्रम आगू बढ़ता है।

0: श्रोताओ गीत हुनु अतु है इतियों बाद अब है मुझे लगता गलबात इंदे बोचे गया अते अंजलि ओ एड़ी हदरुआ है अंजलि रा बड़ा कीमती टाइम हले हुआ अंजलि अपने जीवन रा पूरा सो बलते ए टू जेड जो भी वृतांत सो असी हणा हुआ ते उम्मीद करते श्रोताओ अते दर्शको कि तुसी ओ सारा जीवन थो प्रेरणा मोले बोले खास कर इंदी जड़ी युवा कुड़ी न त्यारे ताई मैं अंजलि रिक्वेस्ट करी कि इन दे जड़ी समुदाय री कुड़ी न खास कर गाबे कल्चर की जड़ी कुड़ी हुंदी सो सॉलिड हुंदी ते अगर ए होरदी हुण होरदी ता अगर थोड़ी तुसी अंदर वीकनेस भी आदा थोड़े स्ट्रांग बनी अच्छा अंजलि एरे कर इंस्पायर हुआ थोड़ी नी कि आ है ता पहाड़ा जो तरमण हुंदे है ई ना बुझ सकदे न मतलब बिल्कुल जतियो बोलते ना कि वो सो कच्चरी गुड्डी है ना वो बिहेव करना थोड़ा स्ट्रांग बनना अपने जड़ा पुराना इंदी जड़न तती ते जुड़ना अते पहाड़ चढ़ना जरूरी नहीं है पहाड़ ही चढ़ना जिंदगी में बड़े तरह रहे पहाड़ इंदे चढ़ने हो सो हर फील्ड अंदर तू एक कामयाब बुन इंदे यही दुआ ते अंजलि तू एड़ी आए अपना कीमती टाइम दिता अपनी पूरी बहो पहले रही तो बहो बाद तकरी पूरा जिंदगी का सफर असी ते डिस्कस करूं तती ते बहुत बहुत धन्यवाद
1: थैंक यू।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ, अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है। और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो, बिल भर देंगे पापा। माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है। सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।
2: अपनों के लिए और अपने लिए।

रिमझिम बरसता भादों का महीना और कान्हा की मीठी बंसी की वो तान, जेल की उस भयानक काली रात में जन्मे जो बने पूरे ब्रह्मांड की

मथुरा में जन्मे, गोकुल में पले और अधर्म का नाश कर दुनिया का किया कल्याण। कारागार में जन्म लिया यशोदा के घर, पले बढ़े और अपनी लीला से जग का किया उद्धार। आ रहा है उसी माखन चोर का जन्मदिन,

0: गुण तो सभी में है, थोड़े तेजी से बढ़े, थोड़े देरी से, थोड़े लंबे तो थोड़े पतले, थोड़े नाटे तो थोड़े तगड़े, थोड़े फल के लिए सब्र कराते, थोड़े तुरंत दिलाते। गुण तो सभी में है, पर जब तक पानी, धूप और मिट्टी ना मिले, ये कैसे बढ़े? काफी बच्चों की भी यही शंका है। सही शिक्षा, पोषण और संरक्षण के बिना ये तारे अधूरे रह जाते हैं। आओ मिलकर बटाए हाथ, देने हर बच्चे को एक हौसला, हर रोज हर बार साथ, तो बढ़ाए एक छोटा सा कदम, भरे इनके सपनों में रंग, और दीजिए इन बच्चों को बढ़ने का बढ़ावा।
1: कर्म कभी किसी का उधार नहीं रखता। आज जो आप दूसरों को दे रहे हो, कल वही आपके पास लौट कर आएगा, चाहे प्यार हो, दर्द हो या धोखा। इसलिए हमेशा अच्छा करो, भले सामने वाला कैसा भी हो, क्योंकि वक्त देर से सही पर हिसाब जरूर करता है।
2: नेहा।
3: हाँ जी।
2: मैं अपने दोस्तों के साथ 5 मिनट होके आ रहा हूँ।
3: हाँ, बस आप हर जगह चले जाते हो, पर कभी मेरे साथ बैठ के मेरे दो शब्द नहीं सुनते।
2: अच्छा बाबा, बैठो, सुनाओ अपने दो शब्द।
3: नहीं जाना।
4: ये भगवान, क्या जुलूम है।

0: मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।
1: अभी न जाओ छोड़ कर

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने की महफिल सजी है रेडियो गुंजन धर्मशाला से फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोताओ, इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं मेरे साथ यानी अपनी दोस्त सुमन के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम लेकर हाजिर हो चुके हैं हम रेडियो गुंजन के स्टूडियो में लेकर ढेर सारी जानकारियाँ और प्यारे प्यारे गीत। जी हाँ श्रोताओ, हर दिन ढेर सारी जानकारियों वाला होता है और दिन भर में थोड़ा सा संगीत ना सुना जाए तब भी कहीं ना कहीं हमारे मन को सुकून नहीं मिलता है, क्योंकि जो संगीत है हमारे मन को सुकून देता है और खुशी भी देता हो। किसी भी तरह का माहौल हो, संगीत सुनना हम पसंद करते हैं और धूम धड़का वाले गीत हम शादी विवाह पर, त्योहारों पर सुनते हैं और घर पर भी मन करता है तब भी गीत लगाकर हम कई बार अपने काम काज में व्यस्त भी रहते हैं। जी हाँ, गीतों का हमारे जीवन में खास अहमियत होती है और सुनना हर किसी को पसंद होते हैं। हर कोई गीतों को गुनगुनाता है, चाहे किसी को ना अच्छा गीत गाना आता हो, लेकिन बाथरूम सिंगर यूँ कह सकते हैं हम सभी होते हैं, थोड़ा बहुत गा ही लेते हैं, पूरा ना भी आए लेकिन गुनगुनाने में क्या हर्ज होता है। जी हाँ साथियों, थोड़ा सा कार्यक्रम में हम भी आगे बढ़ते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन।

श्रोताओं, इस समय आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। श्रोताओं, थोड़ा सा कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी जानकारियां हम आज के दिन आपके लिए लेकर आए हैं। और रही बात हम अपनी खुद की करें, अपने स्वास्थ्य की करें, तो स्वास्थ्य अच्छा होना हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी होता है। अगर स्वास्थ्य ही हमारा अच्छा नहीं होगा तो किसी भी काम को करने का मन नहीं करता है। शरीर है तो छोटे मोटे रोग दोष चले ही रहते हैं और ऐसा नहीं है कि हमें ही ऐसा है, हर किसी को कोई ना कोई रोग आज के समय में लगा ही हुआ है। जहाँ कुछ एक चीज़ें हमें सुख देती हैं, आराम देती हैं, वहीं कुछ एक ऐसी चीज़ें, ऐसे कामकाज करने से हमें तकलीफ भी होती है। हमें से बहुत सारे श्रोताओं ऐसे भी होंगे जिन्हें जो है माइग्रेन की दिक्कत होगी। आजकल वैसे देखा जाए तो माइग्रेन आम प्रॉब्लम हो गई है, हरदम सर में दर्द लगी रहती है और इतनी तेज़ दर्द इसमें होती है कि सहना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। और थोड़ा सा हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम ध्यान रखते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह की बीमारियों से, इस तरह के रोगों से बच सकते हैं। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अपने आप को इनसे ज़्यादा तकलीफ से बचाया जा सकता है। और कई बार क्या होता है कि कामकाजी लोग हों तब भी माइग्रेन की दर्द हो जाए तो बहुत मुश्किल होता है। और वैसे अगर हम बात करें कि घरेलू कामकाज की या घर पर रहने की, दुख कोई भी हो, घर पर रहना हो या बाहर जाना हो, मुश्किल ही होता है। श्रोताओं, आजकल की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हमें कई सारी जिम्मेदारियां निभाना पड़ती हैं। घर, ऑफिस, बच्चे और रिश्तों के बीच में सामंजस्य भी बनाकर कामकाज करने होते हैं। ऐसे में माइग्रेन से अगर हम पीड़ित हैं तो एक दिन चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन माइग्रेन में सिर्फ सर दर्द नहीं होता, इसमें बहुत सारी तकलीफें होती हैं। जिन श्रोताओं को ये तकलीफ़ है वह अच्छी तरह से जानते हैं कि कितनी तेज़ दर्द ये होती है। कई बार तो असहनीय हो जाती है, मतली आने लगती है, उल्टी का मन होता है, थकान होती है और रोशनी और आवाज़ से संवेदनशीलता भी साथ लाता है। और कई बार डॉक्टर के अनुसार सही जीवन शैली से इसे नियंत्रित भी किया जा सकता है। जी हाँ श्रोताओं, सही जीवन शैली अपना के हम बहुत सारे रोगों को अपने आप से दूर रख सकते हैं। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी बातचीत माइग्रेन पर, और भी बातचीत हम साझा करेंगे। तो फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन।

श्रोताओ, इस समय आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम श्रोताओ लेकर आज हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमन। तो श्रोताओ, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारे तरीकों को हम अपना सकते हैं और जिसे ना पूछो आजकल के समय में वही सुखी है या सही है। जिसे पूछ लिया जाए उसे कोई ना कोई रोग ज़रूर लगा हुआ है। रोग कोई भी हो, तकलीफ तो श्रोताओ देता ही है और उस तकलीफ से राहत हम कैसे पा सकते हैं, छोटे छोटे तरीके अपना के। सुबह की शुरुआत की बात करें तो दिन की पहली घड़ी पूरे दिन की ऊर्जा को तय करती है, इसलिए रोज समय पर उठने की हमें सबसे पहले आदत डालनी चाहिए। जल्दी उठना हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी होता है, चाहे छुट्टी ही क्यों ना हो। जगते ही तुरंत कई बार हम क्या करते हैं, कई बार तो क्या श्रोताओ यूँ कह सकते हैं कि तुरंत उठते ही हम अपना फ़ोन देखते हैं और फ़ोन देखने से क्या होता है, तकलीफ हमारी आंखों को, क्योंकि पूरी रात आराम में होती हैं आंखें, एकदम देखने से वो सीधी लाइट हमारी आंखों पर पड़ती है। इसलिए सुबह उठते ही फ़ोन या स्क्रीन बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए। कुछ मिनट स्ट्रेचिंग के लिए, 10-15 मिनट योग या ध्यान के लिए ज़रूर निकालें, या यूँ कह सकते हैं श्रोताओ अपने लिए हमें पूरे दिन भर में 1 घंटा ज़रूर निकालना चाहिए। उसमें हमें योग एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमें से बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो इन कामकाज को करना नहीं चाहते हैं, योग नहीं करना चाहते हैं, बस उनकी धारणा ये होती है कि हम घरेलू कामकाज करते ही हैं। लेकिन श्रोताओ, जो एक्सरसाइज और योग करने से हमारे शरीर को फिटनेस मिलती है, वो कामकाज करने से नहीं मिलती है। ये तो हमने अपना एक भ्रम पाल रखा है कि हम कामकाज तो करते ही है, और साथ ही साथ तनाव से हमें कोसों दूर रहने से माइग्रेन की तीव्रता को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। रोग तो बहुत सारे शरीर में होते हैं श्रोताओ, माइग्रेन के साथ और भी बहुत सारी समस्याएं हमारे शरीर में होती हैं, तो हमें उन्हें दूर करने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत जब हम करते हैं तो बहुत सारे रोगों को अपने शरीर से दूर भगा सकते हैं, फिर चाहे वो माइग्रेन ही क्यों ना हो। जी हाँ श्रोताओ, माइग्रेन को तो हम दूर भगाएंगे ही, लेकिन फिलहाल गीत को पास लाते हैं और सभी मिलजुल कर इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

चलो इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। संडे की शाम है, बड़ी सुहानी सी शाम होती है, बड़ा अच्छा लगता है, दिन पूरा निकल जाता है और अगले दिन की तैयारियों में भी हम जुड़ जाते हैं कि अगले दिन हम सभी को अपने अपने काज पर निकलना होता है। छुट्टी का दिन होता है, छुट्टी 6 दिन काम करने के बाद 7वें दिन हम आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, बहुत सारे कामकाज निपटाने होते हैं और शाम जब होती है, शाम के समय हम सभी जुड़ जाते हैं तैयारियों में अगले दिन की। सब्जी क्या बनानी है, कौन से कपड़े डालने हैं, कौन से कपड़े प्रेस करने हैं, क्या बनाना है, जल्दी उठना है और बहुत सारे काम हम सभी के ध्यान में आते हैं क्योंकि सभी जो है लगभग वर्किंग होते हैं। घर में से एक मेंबर तो ऐसा होता ही है जिसे कामकाज के सिलसिले में बाहर जाना होता है, चाहे ऑफिस जाना हो चाहे जाना हो खेतों में। तो श्रोताओं, हमारी बातें जब शुरू होती हैं तो कब कहां से कहां पहुंच जाती हैं, हमें खुद को ध्यान नहीं रहता है क्योंकि दोस्त प्यारे प्यारे मिलते हैं तो मन करता है कि घंटों बैठ कर बतिया लें। जी हाँ श्रोताओ, बातें तो हमें और भी करनी है लेकिन फिर से हम अपने विषय की ओर बढ़ते हैं और आज हमारी बातचीत हो रही थी कि खुद को स्वस्थ भी हमें रखना है। कामकाज तो जीवन में बेहद ज़रूरी होते हैं लेकिन खुद के लिए समय भी देना ज़रूरी है। और खुद की हम बात करें तो सबसे पहले दिन की शुरुआत श्रोताओ होती है हमारे नाश्ते से। खाली पेट रहने से माइग्रेन को तेज़ी से बढ़ने में हम थोड़ा सा सहायता करते हैं क्योंकि अगर हम पेशेंट हैं, किसी भी तरह के पेशेंट हैं, तो ज़रूर खाना हम सभी के लिए ज़रूरी होता है। ज़्यादा अगर खाने को मन ना हो तो थोड़ा थोड़ा करके हम खा सकते हैं, ब्रेक के साथ खाने को खाया जा सकता है। इसलिए नाश्ते को हम सभी को मिस नहीं करना है, पौष्टिक नाश्ता ही का ही सेवन करना है जिसमें ओट्स, दलिया, फल या मूंग, दालचीला इत्यादि हम खा सकते हैं। चाय, कॉफ़ी और एनर्जी ड्रिंक से तो हमें बिल्कुल ही बचना है क्योंकि कैफीन भी इस सर दर्द को बढ़ा देती है। श्रोता, वही चीज़ों का सेवन हमें करना है जो हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं, जिन चीज़ों से हमें पोषण मिलता है। और रही बात है, जैसे हमने ओट्स, दलिया, मूँग दाल चीले की बात की है, ये पौष्टिक चीज़ें होती हैं, इनसे सारा दिन पेट भी भरा रहता है और हमारे शरीर को बहुत सारी इससे एनर्जी भी मिलती है और जिस चीज़ की हमारे शरीर को ज़रूरत होती है उसकी पूर्ति भी हो जाती है। तो श्रोताओं, ये तो थी जानकारियाँ, और भी हम आपके लिए लेकर आए हैं लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओ, इस समय आप बने हुए हैं रेडियो उज्जैन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को एक बार फिर से हमारी ओर से प्यार भरी नमस्ते। और इसी नमस्ते के साथ श्रोताओ, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, क्योंकि जीवन जीना है तो हमें खुद के स्वस्थ खुद को स्वस्थ रखना बेहद ज़रूरी है। खुद के स्वास्थ्य की ओर ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। श्रोताओ, पानी की अगर हम बात करें तो पानी हम सभी के जीवन के लिए बेहद ज़रूरी है। सुबह की शुरुआत पानी से ही हो जाती है। और दुख बीमारियों की अगर हम बात करें, खासकर आज हम माइग्रेन की बात कर रहे हैं, तो माइग्रेन में दिन भर पानी पीना ज़रूरी होता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन माइग्रेन को बढ़ा देती है। इसलिए हाइड्रेट अगर हम रहें तो बहुत सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं, क्योंकि जो हमारा स्किन होती है उस पर भी नमी बनी रहती है पानी पीने से, और शरीर से विषैले पदार्थ भी पानी पीने से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए पानी हम सब के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पानी पीने के साथ साथ हमें थोड़ा टहलना भी चाहिए, थोड़ा संगीत भी सुनना चाहिए, और मूड को बेहतर रखने के लिए हमें हर छोटे छोटे उपायों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। कई बार क्या होता है श्रोताओ, पानी पीने को मन नहीं करता है, ज़्यादा पानी पीना को ऐसा लगता है कि नहीं पेट भर गया है, अब पानी पीने की इच्छा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आराम करके, थोड़ा सा रेस्ट देके, सिप सिप करके भी हम पानी को पी सकते हैं, या पानी को किसी रूप में ले सकते हैं। जैसे आजकल गर्मियाँ भी हैं, उस पर ही गर्मी होती है, तो ऐसे में हम नींबू पानी का सेवन भी कर सकते हैं, और बीच बीच में थोड़े थोड़े गैप के बाद पानी पीना बेहद ज़रूरी होता है। इसे जो विषैले पदार्थ तो निकलते ही है, और भी बहुत सारी समस्याओं से हमें राहत मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा शरीर जो है हाइड्रेट रहता है। इसके लिए हम नारियल पानी का भी सेवन कर सकते हैं, वो भी हमें बहुत सारी बीमारियों से राहत दिलाता है। जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो हमारी सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद रहती है। तो श्रोताओ, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ समय भी हमें देखना चाहिए, और छोटे मोटे उपाय भी हम कर सकते हैं। कामकाज तो जीवन में कभी ख़त्म होते नहीं हैं, कामकाज तो हमारे ज्यों के त्यों चलते ही रहते हैं, लेकिन खुद हम सही नहीं होंगे तो हम किसी भी काम को करने में असमर्थ हो सकते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप हर काम को करते रहें आराम से, तो उसके लिए थोड़ा सा अपना भी ध्यान रखें और ख्याल रखें। फिलहाल श्रोताओ, इस समय हमें रखना है आपका ध्यान, तो आइए मिलकर एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

शोधो इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आज माइग्रेन के बारे में। हम में से बहुत सारे श्रोताओं को इस दर्द से जो है परेशान होना पड़ता है, क्योंकि दर्द कोई भी हो तकलीफ बहुत देता है। और आज हम स्पेशली बात माइग्रेन की कर रहे हैं, तो माइग्रेन में छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम श्रोताओं बात करें स्क्रीन की, क्योंकि आजकल हम सभी के हाथ में छोटा सा यंत्र यानी मोबाइल होता है, और कहीं भी चले जाएं बस स्टैंड पर या फिर हॉस्पिटल के बाहर या फिर कहीं भी किसी का इंतज़ार कर रहे हों, तो फटाफट से निकालते हैं हम अपना फ़ोन और देखना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप माइग्रेन की तकलीफ से पीड़ित हैं तो स्क्रीन से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखना बेहद ज़रूरी होता है। श्रोताओं, लगातार स्क्रीन देखना माइग्रेन को बढ़ा सकता है। लेकिन ऑफिस की हम बात करें तो ऑफिस में लगातार स्क्रीन देखना हमारी मजबूरी भी हो जाती है, क्योंकि कामकाज बेहद ज़रूरी होते हैं। लेकिन श्रोताओं, काम करते हुए हमें बीच बीच में थोड़ी सी रेस्ट ले लेनी चाहिए, स्क्रीन से नज़र हटानी चाहिए, ताकि हमें सर दर्द से परेशान ना होना पड़े। और अपनी पीठ को भी सीधी रखना चाहिए, स्क्रीन आँखों के लेवल पर हो और पैर ज़मीन पर टिके हों, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना ज़रूरी होता है। जहाँ तक हो सके अपने आप को स्क्रीन से दूरी बनाकर रखें, ना ज़रूरत हो तो फ़ोन को ना चलाएं। अगर गाने सुनने हैं तो गाने सुन सकते हैं हम आराम से, उन्हें देखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर देखना भी चाहें तो हम उसे टीवी स्क्रीन पर लगाकर आराम से देख सकते हैं। क्योंकि श्रोता, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा उस दर्द से आप राहत पा लें, तो उसके लिए थोड़ा सा अपना खुद का ध्यान आपको रखना है। औरों का ध्यान तो हम सभी रख लेते हैं, लेकिन खुद को हम समय नहीं दे पाते हैं। अगर खुद हम सही होंगे तभी तो अपनों का ध्यान भी रख पाएंगे। फिलहाल श्रोता, हमें रखना है आपका ध्यान और आप तक पहुंचाना है कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

जी हाँ श्रोताओ, एक बार फिर से आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे खुद को बेहतर रखने के बारे में, खुद का ख्याल रखने के बारे में, खुद का ध्यान रखने के बारे में, क्योंकि जीवन जीना है श्रोताओ तो हमें खुद को भी थोड़ा सा समय देना होगा, और समय तभी दिया जा सकता है जब हम ये सोच कर चले कि हर एक कामकाज के बाद हमें अपना भी ध्यान रखना है। तो फिलहाल कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे माइग्रेन के बारे में कि हमें से बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जो इस दर्द से पीड़ित होंगे, और माइग्रेन की जब भी दर्द होती है तो बहुत ही ज़्यादा असहनीय हो जाती है, उसमें मन भी करता है उल्टी करने को, और साथ ही साथ सबकी माइग्रेन जो होती है अलग अलग तरह की होती है। इसमें जो होता है तेज़ रोशनी से भी कई बार हमें परेशानी होती है, तेज़ हवाओं से, माफ़ कीजिएगा, तेज़ आवाज़ से भी परेशानी होती है, भूख की वजह से भी ये प्रॉब्लम जो है हमारी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ मौसमी बदलाव या ज़्यादा स्क्रीन टाइम पर बिताना भी हमारी दर्द को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। माइग्रेन होने पर हमारे जो है थोड़ा सा हमें अपने भोजन का ध्यान करना पड़ता है, समय से भोजन खाना चाहिए, नींद का पूरा ध्यान रखना चाहिए, इसके साथ साथ तनाव तो हमें बिल्कुल नहीं लेना है, और मौसम और स्क्रीन टाइम थोड़ा सा नोट करके ही हमें काम करना चाहिए, मौसम का भी ध्यान रखना चाहिए। कईयों को क्या होता है कि तेज़ धूप में ये दर्द जो है बढ़ जाती है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको हो रही है, इस तरह की परेशानी से आप दो चार हो रहे हैं, तो जब भी आप कहीं बाहर निकले, थोड़ा सा शाम के समय हम निकल सकते हैं, बहुत ज़रूरी ना हो तो धूप को हमें अवॉइड ही करना चाहिए। जी हाँ श्रोताओ, इसके साथ साथ पूरा दिन की भाग दौड़ के बाद खुद को रिलैक्स करना बेहद ज़रूरी होता है। शाम के समय हम हल्की वॉक पर जा सकते हैं, अगर हमने अपने घर पर बागवानी थोड़ी सी लगा रखी है तो उसमें टहल सकते हैं, कोई पेंटिंग बना सकते हैं, या फिर अपने पसंद का कोई काम कर सकते हैं जो हमें थोड़ा सा राहत और सुकून भी देते हैं। और जब हमारी बातों का सिलसिला श्रोताओं शुरू हो जाता है तो बहुत सारी बातें दिमाग में चलती है। माइग्रेन की बात हो रही है तो माइग्रेन के मरीजों के लिए जो नींद होती है वो दवा का काम करती है, इसलिए हमें 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। सोने से पहले स्क्रीन से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और कमरे की रोशनी हल्की और माहौल जो है आरामदायक रखना चाहिए। श्रोताओं, इन चीज़ों को अपनाकर हम अपनी दर्द से या इस तकलीफ से थोड़ा सा राहत पा सकते हैं। तो फिलहाल हमारी थी बातचीत यहाँ तक, और बातचीत के साथ साथ आप सभी का करवाना है मनोरंजन कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत के साथ, तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओ, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम श्रोताओ, आज आप एंजॉय कर रहे हैं अपने दोस्त सुमन के साथ। तो श्रोताओ, कार्यक्रम में ढेर सारी जानकारियाँ लिए हर दिन आता है, तो आज के दिन भी बहुत सारी जानकारी हैं और हम हर दिन की जानकारी जो है आपके साथ साझा करते हैं। अब जानकारियों का पिटारे की बात चल रही है, तो थोड़ा सा हम कार्यक्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और थोड़ा सा आस्था की ओर हम बढ़ते हैं। मणि महेश की यात्रा की थोड़ी सी हम बात करते हैं, क्योंकि हम में से बहुत सारे श्रोता दर्शनों के लिए जाते हैं और दर्शन करते हैं, और जाना भी चाहिए क्योंकि बहुत ही पवित्र जगह मानी जाती है। मणि महेश झील हिमाचल प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक है। मणि महेश यात्रा प्रत्येक वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी से राधा अष्टमी तक चलती है, और साथ ही साथ मणि महेश यात्रा जो है इस वर्ष 4 सितंबर से आरंभ होकर 19 सितंबर तक चलेगी। बहुत सारे श्रोता जो हैं जाने की तैयारियों में होंगे, और साथ ही साथ जो है मणि महेश पर्वत के शिखर पर भोर से एक प्रकाश उभरता है जो तेज़ी से पर्वत की गोद में बनी झील में प्रवेश कर जाता है, और इस बात का प्रतीक माना जाता है कि भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बने आसन पर विराजमान होने आ गए हैं, तथा ये अलौकिक प्रकाश उनके गले में पहने शेषनाग की मणि का होता है। शोधो कार्यक्रम में हम और भी जानकारियां आपके साथ आज लेकर आए हैं, वो भी जानकारियां साझी करेंगे आपको। मणि महेश यात्रा के महत्व और थोड़ा सा यात्रा के बारे में भी बताएंगे। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम के अगला प्यारा सा गीत।

0: तो इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से हम वापिस आ चुके हैं और मणि महेश यात्रा की थोड़ी सी हम आपको सैर करवा देते हैं। श्रोताओ, ग्लेशियर और अल्हड़ नदी नालों के बीच से होते हुए श्रद्धालु मणि महेश पहुंचते हैं, जो कि एक रमणीय घाटी में स्थित है। मणि महेश पर्वत की गोद में पर्वत शिखर पर प्राकृतिक रूप से 1 किलोमीटर की परिधि में बने इस झील को देखकर हर कोई विस्मित रह जाता है। झील के किनारे और पर्वत शिखर के नीचे एक मंदिर है, जहां यात्री शीश नवाते हैं। ये मंदिर बिना छत का है। कहते हैं शिव भक्तों ने 2 बार मंदिर पर छत का निर्माण करवाया, पर बर्फीले तूफान में छत उड़ गई। यात्रा शुरू होने पर हरसर गांव के कुछ पुजारी यहां मूर्तियां लाते हैं और समाप्ति पर वापिस ले जाते हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु मणि महेश झील में स्नान कर पूजा करते हैं और अपनी इच्छा पूरी होने पर लोहे का त्रिशूल, कड़ी या झंडा इत्यादि चढ़ाते हैं। और साथ ही साथ श्रोताओ, राधा अष्टमी वाले दिन जब सूरज की किरणें कैलाश शिखर पर पड़ती हैं, तो उस समय स्नान करने से मनुष्य को अनेक प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। और मणि महेश यात्रा चंबा से शुरू होकर राख, खड़ा मुख इत्यादि स्थानों से होती हुई भरमौर पहुंचती है। यात्रा की खोज का श्रेय सिद्ध योगी चरपटनाथ जी को जाता है। यात्रा शुरू करने से पहले भरमौर से 6 किलोमीटर पहाड़ी के शिखर पर ब्रह्मा जी की पुत्री ब्राह्मणी देवी का मंदिर स्थित है। तो श्रोताओ, कार्यक्रम में हम और भी आपको सैर करवाएंगे। फिलहाल साई के 7 बज चुके हैं और कार्यक्रम में समय हो गया है समाचारों का। ये सुनते हैं समाचार।
1: दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। ताशकंद विश्वविद्यालय में संस्कृत की चेयर स्थापित करने के साथ हिंदी के लिए लाल बहादुर शास्त्री के नाम से 100 छात्रवृत्तियों की घोषणा की गई। भारत ने अराल सागर क्षेत्र में वनीकरण के लिए $10 लाख का अनुदान देने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान में UPI के इस्तेमाल के लिए भी समझौता किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
2: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया।
2: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है।
1: केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, सुब्रमण्यम जयशंकर और निर्मला सीतारामन ने उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और भारत तथा उज्बेकिस्तान के बीच चिरस्थायी मैत्री को प्रगाढ़ करने के सतत प्रयासों का प्रमाण है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेषकर युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से देश भर की लगभग 35 लाख महिलाएं अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 768 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। बचाव दल लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को निकालने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल पहुंचे हैं। 900 भारतीय नागरिक चीन में सुरक्षित हैं। पेचिंग के भारतीय दूतावास उनसे सीधे और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से संपर्क में है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज रात 8:30 भारत का सामना थाईलैंड से होगा। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज रात 8:00 वर्तमान चैंपियन जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

इसी गूंज के साथ शोधो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हम मणिमहेश यात्रा के महत्व और उसकी सैर भी आपको करवा रहे हैं, जो कि बेहद ज़रूरी है। आस्था में हर व्यक्ति का योगदान होता है, हर व्यक्ति की आस्था भगवान पर होती है, क्योंकि जब कोई सहारा नहीं रहता है तो हमें याद आती है भगवान की। उस समय हम याद करते हैं ऊपर वाले, कहते हैं भगवान हमें बचा ले, बहुत सारी मुसीबतें हमारे ऊपर आ गई हैं, ये टेंशन परेशानियां हैं, दुख बीमारियां हैं, तब याद करते हैं हम ऊपर वाले को। तो क्यों ना सुखी रहकर भी भगवान को याद कर लिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल श्रोताओ, हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते हमें ऊपर वाले को याद करना चाहिए, उनका धन्यवाद देना चाहिए, अच्छे शरीर के लिए, अच्छे भोजन के लिए, अच्छे वस्त्रों के लिए, अच्छे कामकाज के लिए। और उसने हमें ऐसा बनाया है कि हम इस जीवन को एंजॉय कर रहे हैं। जी हाँ, श्रोता मणिमहेश की यात्रा की ओर फिर से हम थोड़ा सा रुक करते हैं। आदिकाल से ही संत महात्मा योगी और भक्तजन मणिमहेश यात्रा की शुरुआत चंबा से ही करते रहे हैं, क्योंकि चंबा का ऐतिहासिक प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर यात्रा का आधार है एवं प्रारंभिक शिविर हुआ करता था। आजकल चंबा से 65 किलोमीटर दूर भरमोरी 84 में रुककर यात्री आगे बढ़ते हैं, और 84 एक धार्मिक स्थल है जो 84 सिद्धों की तप स्थली है। यहाँ विश्व का एकमात्र धर्मराज मंदिर स्थित है, और चंबा के भरमोर 70 किलोमीटर तथा भरमोर से बड़सर 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके आगे बड़सर से मणिमहेश खड़ी चढ़ाई संकरे तथा पथरीले रास्ते वाला 14 मील की पैदल यात्रा है। तंग पहाड़ी में बसा हरसर इस क्षेत्र का अंतिम गांव है। हरसर से पैदल चढ़ाई करते हुए पहला पड़ाव आता है धनचो। ये रास्ता बहुत कठिन और मुश्किल है। धनचो से आगे और मणिमहेश झील से लगभग 1.5-2 किलोमीटर पहले गोरीकुंड आता है। मणिमहेश झील आम यात्रियों तथा श्रद्धालुओं के लिए यही अंतिम स्थान है। मणिमहेश की डल झील शिव भगवान का स्नान स्थली है, और सदियों से चल रही इस यात्रा को तभी सफल माना जाता है जब यहाँ रात्रि व्यतीत कर भोर होते ही कैलाश पर्वत के दर्शन कर वहाँ कुदरती तौर पर उत्पन्न होने वाले दिव्य प्रकाश में झील में स्नान किया जाता है। तीर्थयात्री झील की परिक्रमा भी करते हैं। तो श्रोताओ, ये तो थी हमारी जानकारी मणिमहेश यात्रा की। यात्रा के साथ साथ आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ। तो आइए सुनते हैं और इन्जॉय करते हैं इस गीत को।

तो इस समय आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। तो कार्यक्रम में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बरसात के मौसम में होने वाले सर्दी जुकाम और बुखार जैसी बीमारियों की बात करते हैं, क्योंकि आजकल ये सब चीज़ें होना आम हो गया है और साथ ही डेंगू और मलेरिया जैसे संक्रमण रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है। इस समय प्राकृतिक उपाय खासकर हर्ब्स के सेवन पर ध्यान देना जरूरी होता है। और वहीं इस बात पर कोई दो राय नहीं है कि पौधे घर की सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होते हैं। ऐसे में क्यों ना हम थोड़े से पौधों की बात श्रोताओं कर ले जो हमारी बालकनी में लगे हों, मिनी हर्ब्स हो, गार्डन में लगे हों, ताजगी और स्वास्थ्य दोनों का हम लाभ ले सकते हैं। और लाभ तो हम पौधों का लेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है पहले सुन लेते हैं एक गीत, गीत के बाद आपको सैर करवाएंगे अपनी बागवानी की, अपने फूलों की, अपने हर्ब्स की, अपने ऐसे पौधों की जो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। तो फिलहाल थोड़ा सा देते हैं कार्यक्रम में विराम और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन।

श्रोताओ, इस समय आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम इस समय सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में हम श्रोता हर्ब्स की बात कर रहे थे कि हर्ब्स घर पर यानी जड़ी बूटियां घर पर लगाना बेहद ज़रूरी होती है। हर्ब्स गार्डन बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी कदम है सही जगह का चुनाव करना, और अधिकतर हर्ब्स को अच्छी धूप की ज़रूरत होती है, इसलिए हमें ऐसी जगह चुननी चाहिए जहाँ रोज़ाना 5 से 6 घंटे की धूप आती हो। अगर घर छोटा है तो हम घर की छत, खिड़की या बालकनी पर इन्हें लगा सकते हैं, और जिनके पास आउटडोर स्पेस नहीं है वे विंडो बैक्सेस या इंडोर ग्रो लाइट्स का सहारा ले सकते हैं। अब हम सोच रहे होंगे श्रोताओं कि क्या लगाया जाए। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो घर पर इस्तेमाल होती हैं, जैसे तुलसी, पुदीना, धनिया, अजवाइन, मेथी और मेहंदी, सौंफ, रोजमेरी जैसी हर्ब्स जल्दी तथा आसानी से घर पर उगाए जा सकते हैं। ये रोज़मर्रा के काम में भी बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके साथ साथ इसकी शुरुआत बीजों या छोटे पौधों से भी हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसे रोज़ाना सीमित मात्रा में हमें पानी देना है, समय समय पर इसकी छंटाई करनी है ताकि ये स्वस्थ रहें और तेज़ी से बढ़ते रहें। ये हर्ब्स हमारे मिनी गार्डन को उपयोगी और खुशबूदार भी बनाते हैं। जी हाँ श्रोताओं, गार्डनिंग करना एक बहुत अच्छा काम है। गार्डनिंग करके हम अपने आप को व्यस्त भी रख सकते हैं और बीमारियों से भी दूर रख सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां इस तरह की होती है कि इन्हें दैनिक जीवन में अगर हम काम में लाते हैं, इस्तेमाल में लाते हैं, तो बहुत सारे रोगों को दूर भगा सकते हैं और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम पहले के समय की बात करें, अपने दादी नानी के समय की बात करें, तो उस समय हमारे बुज़ुर्ग ज़्यादातर हर्ब्स का प्रयोग करते थे और बहुत सारे बीमारियों से निजात भी पा लेते थे। आजकल के समय में किसी के पास इतना समय नहीं है कि कोई काढ़ा बनाए या इन चीज़ों का इस्तेमाल करे, बस ये सोचते हैं कि फटाफट से एक गोली या दवाई ली और उसे खा लिया और रोगों को दूर भगा दिया। जी हाँ श्रोताओं, हर्ब्स घर पर लगाने बेहद ज़रूरी होते हैं। हर्ब्स सबसे अच्छे ढंग से ऐसी जगह पर उगते हैं जहाँ पर्याप्त धूप मिलती है, मिट्टी जल निकासी वाली हो। इसलिए अगर आप कंटेनर में या गमले में लगा रहे हैं तो कंटेनर के लिए ड्रेनर होल ज़रूर रखें ताकि अतिरिक्त पानी उससे निकल जाए। पुराने डब्बे घर पर बहुत सारे होते हैं, रिसाइकल के लिए हमने रखे होते हैं। प्लास्टिक की बोतलें, लकड़ी या बांस को भी कंटेनर के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखें कि कंटेनर की गहराई कम से कम 6 या 8 इंच होनी चाहिए ताकि जड़ें अच्छी तरह फैले और पौधा स्वस्थ रह सके। तो इस तरह हम घर पर छोटी छोटी चीज़ों को लगाकर श्रोता अपने आप को भी व्यस्त कर सकते हैं। जितना जीवन में व्यस्त रहे उतना ही अच्छा रहता है, और अगर हम खाली बैठे रहेंगे तो इधर उधर ध्यान जाता है। कई बार हम परेशान भी हो तब भी हम अपने आप को गमलों में या खेतीबाड़ी बागवानी में कहीं भी उलझाकर रख सकते हैं। बहुत सारा हम अपने आप को व्यस्त रखने में योगदान भी दे सकते हैं। और होता क्या है श्रोता, हमें पता होता है कि हमारे हाथ से लगाए हुए पौधे बढ़ रहे हैं तो अच्छा एक खुशी भी होती है। हम समय समय पर पानी देते हैं, उसके बीच में लगे जो सूखे पत्ते होते हैं उन्हें भी निकालते हैं, गुड़ाई करते हैं, समय समय पर खाद डालनी है, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, तो एक हमारी रूटीन बन जाती है कि उस रूटीन में हमें ये काम करने हैं, और बदले में हमें मिलते हैं हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ जो हमारी तंदुरुस्ती के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। तो श्रोता, इस तरह की चीज़ों को अपने घर पर ज़रूर लगाएं जो आपको थोड़ी तकलीफ़ों से भी राहत देती हैं, रोगों को दूर भगाती हैं। हम तो श्रोता यही चाहते हैं कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े और छोटे मोटे रोगों से आप दूर रहें। तो श्रोता, इसके लिए करनी होगी थोड़ी सी मेहनत और लगाने होंगे आपको पौधे, तो आप लगाएं पौधे। हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत, तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोतो इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम आप सभी के रेडियो सेट पर इस वक्त चला है गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला सुनने वाले सारे श्रोताओं को एक बार फिर से प्यार भरी नमस्ते और इसी नमस्ते के साथ श्रोतो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और कुछ स्थानीय जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहाँ की कांग्रेस सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि भाजपा केवल कर्मचारियों और पेंशनरों के नाम पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा है 67 वर्ष की अधिक आयु के पेंशनरों को पूरा बकाया लीव इन कैशमेट और कैजुअल्टी का भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनके वेतन बकाया के अतिरिक्त 20,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि श्रेणी 1, श्रेणी 2 और श्रेणी 3 के पेंशनरों के लिए बेसिक पे से संबंधित शर्तों को हटाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस शर्त को हटाए जाने के बाद सभी पात्र पेंशनरों को उनसे लंबित बकाया का 35% भुगतान किया जाएगा। तो श्रोतो ये तो थी हमारी जानकारियाँ। अपनी जानकारियों को थोड़ा सा हम यहीं पर रोकते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

14 समय आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में हम हर्ब्स की बात कर रहे थे कि हर्ब्स जड़ी बूटियां घर पर लगाना बेहद ज़रूरी होते हैं। घर में प्राकृतिक रूप से उगे हर्ब्स पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी होते हैं। इनका उपयोग रोज़मर्रा के व्यंजन, चटनी, सलाद, सब्जी, हर्बल चाय में कर सकते हैं और इन्हें स्वस्थ बनाए रखने के लिए इनकी सही देखभाल भी बेहद ज़रूरी होती है। इसलिए गार्डन की नियमित सफाई करें, सूखी और पीली पत्तियों को हटाएं, हफ्ते में एक या दो बार मिट्टी को ढीला करें ताकि जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके। अधिक बारिश के समय हर्ब्स को सुरक्षित स्थान पर रखें, इससे हर्ब्स ताज़े और लंबे समय तक उपयोगी बने रहते हैं। तो शोधो इस तरह से रखें आप हर्ब्स का ध्यान और हम रखते हैं आपका ध्यान गीत के जरिए। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओ, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में हम हर्ब्स की बात कर रहे थे श्रोताओ। तो हर्ब्स गार्डन में केवल जैविक खाद का उपयोग करें ताकि पौधे स्वस्थ और मजबूत बने। घर में बनी खाद भी उपयोगी होती है, जैसे हम सब्जियों के छिलके सूखे पत्तों को किसी गड्ढे में दबा दें, उससे भी खाद तैयार हो जाती है। और गोबर और नीम की खली मिलाकर खाद तैयार करें, क्योंकि नीम की खली में कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम होते हैं, जो हर्ब्स की वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें श्रोताओं, हम हर्ब्स को घर पर लगा सकते हैं और छोटे मोटे रोगों में उनको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। अपनी जानकारियों के साथ साथ आपको लिए चलते हैं गीत संगीत की।

0: तो इसी गीत के साथ हम बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, और हमारी बात हो रही थी हर्ब्स के बारे में कि हर्ब्स लगाना भी ज़रूरी होता है, बहुत सारी बीमारियों से राहत दिलाते हैं और हम घर पर लगाकर बहुत सारा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। अगर प्रॉफिट कमाना चाहें तो उन्हें बेचकर बहुत सारा फ़ायदा भी लिया जा सकता है। गार्डन या गमलों में उग रहे हर्ब्स को फंगस से बचाने के लिए 15-20 दिन के बाद नीम के तेल का स्प्रे ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पौधे स्वस्थ रहें, तो इसके लिए उनकी देखभाल ज़रूरी होती है। नीम का तेल कीटों को दूर रखता है और पानी में लगने वाले फंगस को भी रोकता है। इससे पौधों के पत्ते और मिट्टी साफ रहती है और हर्ब्स स्वस्थ बने रहते हैं और बेहतर इनका विकास होता है। अगर तेल आपके पास नहीं है श्रोताओं, तो नीम का पाउडर लेकर उसे पानी में घोलकर भी आप उनका स्प्रे कर सकते हैं। इससे भी आपके पौधे जो है फंगस से बच सकते हैं। तो हुए ना श्रोताओं, पौधों को लगाने के कितने सारे फायदे। एक तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, हम अपने आप को व्यस्त रख सकते हैं, और जब कभी मन ना लगे तो अपनी गार्डनिंग कर सकते हैं। हर्ब्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें हम घर पर उगा सकते हैं, लगा सकते हैं। जब हम पौधों को घर पर लगाते हैं तो एक हमारी आदत बन जाती है कि उन्हें पानी भी देना है, उनकी गुड़ाई भी करनी है, उनमें खाद भी डालनी है, समय समय पर उनकी देखभाल भी करनी है। और जब पौधे बढ़ते हैं श्रोताओं, तो बहुत अच्छा लगता है। और घर पर लगाए गमलों की बात करें, उन पर खिले फूल भी सुशोभित होते हैं, घर की शोभा को बढ़ाते हैं। जब हमारे घर कोई आता है तो वो भी देखता है और यही कहता है कि बहुत ही खूबसूरत आपके पौधे लग रहे हैं, वे कहाँ से लाए हैं। बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल हमसे करते हैं या कहते हैं कि अगर इसका कोई बीज या इसकी टहनी आप दे सकते हैं तो वो हमें भी दे देना, हम भी अपने घर पर लगाएंगे। या कई बार हम कटिंग करते हैं तो जिन्होंने लगाए हैं तो उन्हें बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, वो आस पड़ोस में दे देते हैं ताकि वो पौधे लग जाए। तो श्रोता, इन्हीं बातों और जानकारियों के साथ कार्यक्रम में समय हो गया है 7:45। तो आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए आगे आने वाले लोगों के प्रयासों को सराहा। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार कर्मचारियों व पेंशनरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। भाजपा पर लगाया राजनीति करने का आरोप। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने प्रदेश उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों को दिलाई पद व गोपनीयता की शपथ। और प्रदेश में फिर सक्रिय हुआ मॉनसून, शिमला समेत कई भागों में व्यापक वर्षा, 3 सितंबर तक भारी वर्षा का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी पर आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत केवल एक औपचारिकता नहीं है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग, विशेषकर युवा, इसका हिस्सा बन रहे हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नशे की लत से केवल एक व्यक्ति पर ही दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि पूरे परिवार और समाज को इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। उन्होंने नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए आगे आने वाले लोगों की सराहना की।
3: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं, क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो, क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो। हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
2: पीएम स्वनिधि योजना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। उन्होंने कहा कि देश भर में करीब 35 लाख महिलाएं योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं।
3: पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे एक दुकान। तूफान में बदल गया।
2: प्रधानमंत्री,

तो मौसम खराबी की वजह से हम आप तक समाचार नहीं पहुंचा पाए हैं, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। खैर कोई बात नहीं श्रोताओ, लेकिन हमारे पास बातें और जानकारियां तो आपके लिए बेहद बेशुमार हैं। बेहद तो क्या, बेशुमार कह सकते हैं, और उन्हें हम आपके साथ साझा भी करते हैं और जानकारियां तो देते ही रहेंगे। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: धानिया, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल सहित अन्य गणमान्य लोग शिरकत की। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का विशेष प्रयास कर रही है। घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के पनोह और बकरुआ में जनसंवाद के दौरान उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य से सरकार ने अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू की है। धर्माणी ने कहा कि इस योजना में विशेष उन परिवारों को प्राथमिकता दी गई है जो सामाजिक धारा से बाहर रहे हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कोटखाई उपमंडल की रावला क्यार पंचायत में आज थाना संपर्क मार्ग के उन्नयन कार्य का भूमि पूजन किया। इस कार्य पर करीब 4 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। रोहित ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जुब्बल कोटखाई क्षेत्र में 186 नई सड़कों की सफल पासिंग हो चुकी है और ये प्रक्रिया निरंतर जारी है। सांसद अनुराग ठाकुर ने पंचायत प्रतिनिधियों से गांव के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। हमीरपुर जिला के भोरंज में आज एक समारोह में उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं भारतीय लोकतंत्र की ऐसी आधारशिला है जहां लोकतंत्र सीधे जनता के द्वार तक पहुंचता है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि डिजिटल तकनीक, जनभागीदारी और पारदर्शिता ने पंचायतों के कामकाज को नई दिशा दी है। प्रदेश में कुछ दिनों तक धीमा पड़ने के बाद मॉनसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। इसके प्रभाव से राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में दोपहर बाद व्यापक वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने 3 सितंबर तक राज्य के विभिन्न जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के कारण भूस्खलन के चलते कालका शिमला रेल लाइन पर आज रेल यातायात प्रभावित रहा। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार भूस्खलन के कारण प्रदेश में 64 सड़कें अवरुद्ध है। इसके अलावा 226 विद्युत ट्रांसफार्मर और 9 पेयजल योजनाओं पर भी असर पड़ा है। इस मॉनसून सीजन में बारिश और इससे जुड़े हादसों में अब तक 253 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा संपत्ति को 1,184 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है। चंबा पुलिस ने विश्व प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा के सफल संचालन के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। ये यात्रा 4 सितंबर से 19 सितंबर के बीच चलेगी। पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि लोगों की सुरक्षा व बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की जाएगी। उन्होंने कहा कि यात्रा क्षेत्र को 13 सेक्टरों में बांटा गया है।
1: जो मणिमहेश यात्रा है इसको 13 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, राइट फ्रॉम चंबा टू डल लेक तक। इसमें 13 सेक्टर डिवाइड किए हैं जिसमें लगभग 500 के लोग जो हैं इसमें होमगार्ड, पुलिस तथा अन्य लोग जो हैं सम्मिलित रहेंगे, ड्यूटीज करेंगे। इसमें हमने 4 कमांड नाके बनाए गए हैं जिसमें तुन्नू हट्टी से लाडो बैरियर, महिला तथा हटसर। इस बार जो यात्रा होगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही संभव हो पाएगी, तो सभी लोगों से मेरी ये भी विनम्र रहेगा कि अपना रजिस्ट्रेशन कराएं तभी यात्रा पे प्रोसीड करें आगे।
0: सोलन नगर निगम की नवनिर्वाचित महापौर सुषमा शर्मा व उप महापौर गौरव राजपूत सहित भाजपा के नवनिर्वाचित पार्षदों ने आज शिमला में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर से भेंट की। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों को शुभकामनाएं देते हुए सोलन शहर के विकास और जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर उठाने का आह्वान किया। हिमाचल सेब उत्पादक संघ ने सरकार से सेब व अन्य फलों का मंडी मध्यस्थता योजना का बकाया भुगतान तुरंत करने की मांग की है। संघ के राज्य कमेटी सदस्य संजय चौहान ने कहा कि बागवानों द्वारा जरूरी दस्तावेज जमा करवाने के बावजूद भी उनके खातों में बकाया राशि जमा नहीं की जा रही। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए आगे आने वाले लोगों के प्रयासों को सराहा। मुख्यमंत्री ने कहा सरकार कर्मचारियों व पेंशनरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध, भाजपा पर लगाया राजनीति करने का आरोप। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों को दिलाई पद व गोपनीयता की शपथ। और प्रदेश में फिर सक्रिय हुआ मॉनसून, शिमला समेत कई भागों में व्यापक वर्षा, 3 सितंबर तक भारी वर्षा का येलो अलर्ट। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: श्रोताओं, समाचारों के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। अब चलते चलते आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ।
2: अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो। बिल भर देंगे पापा।
1: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है।
3: सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम

रिमझिम बरसता भादों का महीना और कान्हा की मीठी बंसी की वो तान, जेल की उस भयानक काली रात में जन्मे जो बने पूरे ब्रह्मांड की शान।

मथुरा में जन्मे, गोकुल में पले और अधर्म का नाश कर दुनिया का किया कल्याण। कारागार में जन्म लिया यशोदा के घर, पले बढ़े और अपनी लीला से

जन्माष्टमी पर्व आइए मिलकर मनाएं हम सब एक साथ। आने वाले जन्माष्टमी पर्व की आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

0: गुण तो सभी में है, थोड़े तेजी से बढ़े, थोड़े देरी से, थोड़े लंबे तो थोड़े पतले, थोड़े नाटे तो थोड़े तगड़े, थोड़े फल के लिए सब्र कराते, थोड़े तुरंत दिलाते। गुण तो सभी में है, पर जब तक पानी, धूप और मिट्टी ना मिले, ये कैसे बढ़े? काफी बच्चों की भी यही शंका है। सही शिक्षा, पोषण और संरक्षण के बिना ये तारे अधूरे रह जाते हैं। आओ मिलकर बटाए हाथ, देने हर बच्चे को एक हौसला, हर रोज हर बार साथ, तो बढ़ाए एक छोटा सा कदम, भरे इनके सपनों में रंग, और दीजिए इन बच्चों को बढ़ने का बढ़ावा।
1: कर्म कभी किसी का उधार नहीं रखता। आज जो आप दूसरों को दे रहे हो, कल वही आपके पास लौट कर आएगा। चाहे प्यार हो, दर्द हो या धोखा, इसलिए हमेशा अच्छा करो, भले सामने वाला कैसा भी हो, क्योंकि वक्त देर से सही पर हिसाब जरूर करता है।
2: नेहा।
3: हाँ जी।
2: मैं अपने दोस्तों के साथ 5 मिनट होके आ रहा हूँ।
3: हाँ, बस आप हर जगह चले जाते हो, पर कभी मेरे साथ बैठ के मेरे 2 शब्द नहीं सुनते।
2: अच्छा बाबा, बैठो, सुनाओ अपने 2 शब्द।
3: नहीं जाना।
4: ये भगवान, क्या जुलूम है,

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ।
2: अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो। बिल भर देंगे पापा।
1: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है।
3: सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

रिमझिम बरसता भादों का महीना और कान्हा की मीठी बंसी की वो तान, जेल की उस भयानक काली रात में जन्मे जो बने पूरे ब्रह्मांड की शान।

मथुरा में जन्मे, गोकुल में पले और अधर्म का नाश कर दुनिया का किया कल्याण। कारागार में जन्म लिया यशोदा के घर, पले बढ़े और अपनी लीला से जग का किया उद्धार। आ रहा है उसी माखन चोर का जन्मदिन।

महाअष्टमी पर्व आइए मिलकर मनाएं हम सब एक साथ। आने वाले जन्माष्टमी पर्व की आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

0: गुण तो सभी में है, थोड़े तेजी से बढ़े, थोड़े देरी से, थोड़े लंबे तो थोड़े पतले, थोड़े नाटे तो थोड़े तगड़े, थोड़े फल के लिए सब्र कराते, थोड़े तुरंत दिलाते। गुण तो सभी में है, पर जब तक पानी, धूप और मिट्टी ना मिले, ये कैसे बढ़े? काफी बच्चों की भी यही शंका है। सही शिक्षा, पोषण और संरक्षण के बिना ये तारे अधूरे रह जाते हैं। आओ मिलकर बटाए हाथ, देने हर बच्चे को एक हौसला, हर रोज हर बार साथ, तो बढ़ाए एक छोटा सा कदम, भरे इनके सपनों में रंग, और दीजिए इन बच्चों को बढ़ने का बढ़ावा।
1: कर्म कभी किसी का उधार नहीं रखता। आज जो आप दूसरों को दे रहे हो, कल वही आपके पास लौट कर आएगा। चाहे प्यार हो, दर्द हो या धोखा, इसलिए हमेशा अच्छा करो, भले सामने वाला कैसा भी हो। क्योंकि वक्त देर से सही पर हिसाब जरूर करता है।
2: नेहा।
3: हाँ जी।
2: मैं अपने दोस्तों के साथ 5 मिनट होके आ रहा हूँ।
3: हाँ, बस आप हर जगह चले जाते हो, पर कभी मेरे साथ बैठ के मेरे दो शब्द नहीं सुनते।
2: अच्छा बाबा, बैठो, सुनाओ अपने दो शब्द।
3: नहीं जाना।
4: ये भगवान, क्या जुलूम है,

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आपकी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना श्रद्धा भक्ति और संगीत का संगम सुनिए हर सुबह सिर्फ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन के साथ।

दोस्तों कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं आराधना, जहां मन को मिले सुकून और आत्मा को शांति। ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं दोस्तों अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों भक्ति संगीत आराधना का ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला भजन।